0: रब ना करे जे तुहाडी कार ट्रक जां ट्रेलर किते भी एक्सीडेंट हो गया है जां खराब हो गई है तां फिकर करन दी जरूरत नहीं। अज ही कॉल करो एसटी टोइंग जां कामटो 416-243-7777 जां तुसी कॉल कर सकते हो 416-513-1313। ये सारी इंश्योरेंस कंपनी नाल खुद डील करदे ने। एसटी टोइंग
1: Sarai Trucking, the name you can trust in transportation industry. Hire kar rahe ne AZ company drivers and owner operators for Midwest, Southwest, California and Toronto Montreal run. Steady work around the year. All new equipments de naal 24/7 the friendly dispatch aur te vadhiya pay rate te weekly payment basis te direct deposit lain layi ajj hi call karo. Sarai Trucking 905-794-8837 905-794-8837 Sarai

0: ये लंबी रेस तक उड़ाने, ये बेच वो क्वालिटीज़, वो जिहड़ी एक स्ट्रेंथ हुंदी है, जिहड़ी कटिंग एज हुंदी है, कि वो है नहीं। ये एक टर्म वास्ते आए ने, लोगों के सेंटीमेंट से खेल के आए ने, क्योंकि जिहड़ियां पुरानियां पंजाब दियां रवायती जमातां सी वो कुछ हद तक फेल हुईयां सी। लोग एक बदल चाहते से, ये वेरियस फील्ड्स दे विचों लोग आए, लोगों के जज्बात है, क्योंकि पंजाबी जिहड़ा बड़ा सेंटीमेंटल ते सिंसियर है,
1: जी
0: उन्होंने सेंटीमेंट्स तो खेलिया। तो 75 साल च पहली बार एक इहोजी जमात आई जिहदे तो हर आम आदमी नूं उम्मीद बन गई।
1: जी
0: नाम ही आम आदमी सी, सिंबल भी झाड़ू दा चुन लिया, ते लोकां नूं उम्मीद सी कि साडे वर्गे ने, ये ऑर्डनरी सिटीजनज ने, ये पिंड दीआं सत्थां तों जदों साडी को गल होएगी साडी मन्निया करनगे। तो मैनूं ये इलम है सी कि ये जिन्ने बंदे ने, ये वक् वक् फ्रॉ, इन्हां च किसे च केपेबिलिटी है नहीं,
1: जी
0: इन्हां च सिंसैरिटी है नहीं, ये लोगों के जज्बात को बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे। वह सिट्टा निकलिया, तुम्हें याद होएगा नंदप्रीत जी, मैं तुम्हें पहले ही दसिया कि एक टाइम आएगा जदों बीजेपी का महाराष्ट्र वाला जहाज, महाराष्ट्र का मतलब सी एक, इन्होंने एक्सपेरिमेंट सारे सूबे किया,
1: जी
0: क्लोजली स्टडी करो, पहले टाइम हरियाणा तो शुरू होया, चौटाले नंबर वन होंगे सी,
1: जी
0: बीजेपी तो 3 तो 4 MLA होंगे सी, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता
1: जी
0: वधदे वधदे अज चौटाले मुक गए ते बीजेपी नंबर वन होगी। सिमिलर इन्होंने एक्सरसाइज बहुत सारे सूबे होने, तुसी बिहार च वेख्या जिस आदमी के नाँ ते वोटा लईया उन्होंने 2 महीनों बाद ही उतार दिता,
1: जी
0: नीतीश कुमार साहब नूं अपना बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बना रहा। हुण तुसी वेख्यो आंदे 2-3 सालों तो बाद JDU जिहड़ी है ये बिल्कुल उस जिहड़ा पोलिटिकल मैप है बिहार तो खत्म हो जाएगी। इस
1: जी
0: तरह ही इन्हें अकाली दल मकाया जी, इस तरह ही इन्होंने नवीन पटनायक ने अंडरस्टैंडिंग की थी, पटनायक साहब नवेड़ से
1: जी
0: महाराष्ट्र के विच ठाकरे ब्रदर्स सीनियर होंगे, शिवसेना उत्ते होंगी सी, बीजेपी थले होंगी सी, यंगर ब्रदर होंगी सी, फिर इन्होंने ठाकरे ब्रदर्स के विच पार्ट पाई, एकनाथ शिंदे तोड़िया, पवार साहब के नाल उन्हों का भतीजा अजीत पवार तोड़िया, दोनों पार्टियां खत्म करके अपना झंडा बुलंद कर दिता। सो मैनू यह अंदाजा है सी कि किसी स्टेज पर जिस दिन वो जहाज लगा, एकनाथ शिंदे ये आम आदमी पार्टी चो बनाएंगे, क्योंकि इन्हां नाल कोई आइडियोलॉजी नाल वेडिड बंदा नहीं,
1: जी
0: ना तो आप दी कोई आइडियोलॉजी है, ना किसी की, वक् वक् पोलिटिकल पार्टियां जो बंदे ले रहे, मेजोरिटी बंदे कांग्रेस के 22-24 MLA ने जिहड़े किसी टाइम मेरे थले काम करते रहे,
1: जी
0: मेरे नाल अज भी तुलक रखते हैं, उन्हां दी आइडियोलॉजी कांग्रेस जरूर है सी, बट ये नहीं सी। कुछ अकाली दल चो आए ने, कुछ भाजपा चो आए ने, कुछ इंडिपेंडेंट है सन बंदे जिहड़े ने वेरियस फील्ड चो चुके, सो लॉन्ग टर्म इकट्ठे नहीं सी रहने। सो मेरा ख्याल ये है कि जिदन वो जहाज होने लगे, कि वेखो 6 MP तोड़ के लै गए,
1: जी
0: 7वां इन्हां दी दिल्ली दी सी मालीवाल, वो चली गई। हुण मैनूं ये लगता कि जिहड़े 3 MP रह गए ने लोक सभा दे, ये भी ऑलमोस्ट सारे तैयारी च ही ने जाण दे।
1: अच्छा, वो भी जा सकते हैं।
0: हाँ 100% जाणगे जी, वेखो कंग साहब का तो तकरीबन 6 महीनों के मलविंदर सिंह कंग के बयान आ रहे हैं कि जिहड़ी इलीगल माइनिंग हो रही है
1: जी
0: तो जिहड़ा नशा विक रहा है, उन्हां दी लिस्ट मैं भगवंत मान नूं दित्ती है। मैनूं उदों ही अंदाजा हो गया सी कि हुण कंग साहब लंबा अरसा इन्हां च रह नहीं पाणगे, जे रहना भी चाहणगे ना रहन नहीं देना उन्हां नूं।
1: जी
0: और जिहड़े दूजे ने अपने चब्बेवाल साहब, चब्बेवाल साहब नूं विजिलेंस का केस करा के डरा के बांह मरोड़ के लैके गए, वो मेरे डिप्टी लीडर सन कांग्रेस,
1: जी
0: वो भी खुशी नाल नहीं गए, वो भी कई जमातों नाल इन टच ने, वो भी इत्थे नहीं रहने। तीजे मीत हेर साहब है ने, मेरा ख्याल ये भी तुसी 10-15-20 दिन या महीने सभा तुसी वेखोगे, जिद्दण भाजपा नूं ग्रीन सिग्नल दे देगा, ये सारिया दा विलंब ही हो जाएगा।
1: पर पिछले कुछ दिनों से भाजपा साहब लगातार ये गल्लां सुनने को मिल रही ने कि कोई कहता जी 50 MLA बीजेपी जाने तैयार ने, कोई 60 कहता है, कोई 40 कह रहा। तुहाडे कोल की इनफॉर्मेशन है कि आम आदमी पार्टी के बहुगिनते MLA बीजेपी जाने तैयार ने?
0: क्योंकि मैं तो क्लोजली फॉलो करना नैशनल पॉलिटिक्स नूं ते इन्हां नूं भी, मैं तुहानूं हैरानी वाली गल तुहानूं कल्लिआं नाल शेयर कर लगा, तकरीबन 50 MLAs आम आदमी पार्टी दे पिछले 3 महीने तो
1: जी
0: बीजेपी दी लीडरशिप नाल इन टच ने, ते जाके दिल्ली मिल भी आए ने।
1: अच्छा जी,
0: इन्हां दी जो इन्हां दी कीमत कूमत है सी वो तय हो चुकी है, मिनिमम 50 बंदे।

मैं तख्त लाहौर दा जां कह लो खालसा राज दा तख्त पंजाब दी शान हर सिख दी अख दा ख्वाब जिस ते बैठ के मेरे महबूब राजे शेरे पंजाब ने 40 साल राज कीता। पर अज मैं किसे अजायब घर दे विच नुमाइश लई रखिया होया क्योंकि पंजाबी मैनू भुल गए ते सिख भुलते जा रहे ने कि वह भी कदे राजे हुंदे सी। मैं सदियां दा सफर तय कीता पर मेरी शान ऐदां दी नहीं सी। मेरे इस सफर दी दास्तान विच वफा बेवफाई धोखा गद्दारी ताकत कतल लालच ते होर भी बहुत सारे रंग सन। सदियां तो चल के मेरी कहानी मेरे महबूब राजे शेरे पंजाब तक आउंदी है ते मैं सुना रहा अपनी कहानी ते ले चलदा तुहानू सदियां पिछे जिथों मेरी ये दास्तान शुरू हुई सी। हिंदुस्तान दी ओ धरती जिथे मिट्टी विचों ज्ञान फुटदा सी ते हर दरिया रूहानियत दे राग गाउंदा सी ते उन्हां रागां दी शांति भंग कीती हिंदुस्तान ते चढ़ के आए सिकंदर ने ते उसदा राह रुकिया पंजाब दे जाए राजे पोरस ने। भावें पोरस ओ जंग हार गया पर सिकंदर पोरस की बहादरी तो इन्ना मुतासर होया कि वह जंग जित के भी वापस परत गया। पर गल इत्थे खत्म नहीं हुई। फिर चढ़ के आया सालम हमलावर बिन कासिम ते ए है दर्राए खैबर हिंदुस्तान दी बर्बादी दा दरवाजा ते इसे दरवाजे राही लंघ के आया सी।

0: क्योंकि अवतार लिए साडा पीछा कर रहे हैं।
1: पर बाबा जी उस साडा पीछा क्यों कर रहे हैं?
0: क्योंकि वो इस देश का राजा बनना चाहता है।
1: फिर बाबा जी आपा राजा बन जाने हैं?
0: पुत्र जी आपा ता पहलो ही राजे हाँ। जी देते गुरु खुश होंदा है ओनू सिखी शस्त्र ते घोड़े दे के निवाजदा है।
2: अब्दाली ने सोचा कि इस बार का हमला हिंदुस्तान पे नहीं इन सिखों को खत्म करने के लिए करूंगा। हम अपनी 2 लाख के करीब फौज घोड़े तोपें लेकर सिखों का नामो निशान मिटाने के लिए चल पड़े। हमें पता चला कि सिखों का एक बहुत बड़ा जत्था बच्चे बूढ़े औरतों के साथ मालवा की तरफ जा रहा है। अब्दाली ने उन सब को मालवा की धरती पे जाके घेरा डाला। उनके बहुत सारी जर्नैल थे और उनका एक जर्नैल था जस्सा सिंह आलूवाल।
3: खालसा जी अज दा दिन ते अज दी रात बहुत भारी है। अब्दाली अपनी फौजां दे नाल चढ़ के आ चुका है। उन्हें लगता है कि वह हिंदुस्तान नू अपना गुलाम बना लेगा पर वह यह गल भुल गया है कि सिखां नू गुलाम नहीं बना सकता। जे वह दे नाल लखां दी फौज है तो साडे नाल कलगीधर पातशाह असीं लड़दे रणतत्ते विच मर जावांगे पर मैदान नहीं छड़ांगे।
2: सिखों के जत्थे में औरतें बच्चे बूढ़े और लड़ने वाले सिपाही थे और हमारे पास उनसे कहीं ज्यादा सिपाही थे और अब्दाली का सख्त हुक्म था बच्चे बच्चे को काट डालो कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। पंजाब की धरती से सिखों का नामो निशान मिटा दो। और हमने उन सिखों का नामो निशान मिटाने के लिए बच्चे बच्चे को काट डाला और पूरे मैदान में सिखों की लाशों के अंबार। ऐसा लगता था कि धरती खून की नदियों से लथपथ गई। शाम ढलते हमने सिखों की पूरी नस्ल को तबाह कर दिया और आग लगा के उनका नामो निशान मिटा दिया। दुनिया की तारीख में ये सिखों का सबसे बड़ा कत्लेआम था। हर तरफ सिखों के कटे हुए सर लाशों के ढेर दिखाई दे रहे थे पर हमें नहीं पता था कि उनमें से कुछ सिख बच गए। हमने जंगल को आग लगाई लेकिन उनकी आंखों का गुस्सा हम देख नहीं सके।

0: हिम्मत रखो खालसा जी, घबराउना नहीं। हे समा सिख कौम ते कोई पहली बार नहीं है। दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह साहब ते भी ये समा बनिया सी, जदों आनंदपुर साहब दे किले नू घेरा पिया, सारा परिवार पंथ गुरु साहब तो विछड़ गया। पंथ परिवार वार के भी मेरे कलगीधर पातशाह ने दोवें हाथ जोड़ शुकराने दा अरदासा कीता। खालसा जी असी भी अरदास करांगे।
1: ठीक है बाबा जी, असी भी कलगीधर पातशाह जी दे चरणां च अरदास करते हैं।
0: हे दशमेश पिता, आप जी दे पंथ ते बिगड़ा समा बनिया, जालम ने अचनचेत हमला करके मजलूम बीबियां पुचंगियां ते सिंघां नूं शहीद कर दिता। सारे शहीदां मुरीदां नूं अपने चरणां दा निवास बख्शियो। हे कलगीधर पातशाह, आप इस पंथ दे वाली हो, पंथ दी पैज रखना, पंथ दी चढ़दी कला करनी। गगन दमामा बाजियो।

सिखों को मारने के बाद अब्दाली समझ गया कि उसने सिर्फ सिखों का जिस्म खत्म किया है, लेकिन उनकी रूह, उनका दिल अभी जिंदा है। और अब्दाली वहां से सिखों की रूह, उनके दिल हरमंदर साहब पे हमला करने के लिए।

आनंद सुनो वडभागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे।

सतगुर रहिया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता।

0: एक फैसला होया, बदला लिया जाएगा। सिखा ने लाहौर वाल कूच किया। उधर अब्दाली कलानौर विच बैठा अपनी जित दे सुपने देख रहा सी। उसनु लगदा सी कि सिख खत्म हो चुके ने, पर जदों उसनु खबर मिली कि सिख फिर खड़ गए ने, वो हैरान रह गया। वो तुरंत अपनी फौज दे नाल वापस आया। उसनु लगदा सी ये जंग आसान होवेगी, पर इस वारी सामने जख्मी सिख नहीं सन,
1: इस वारी सामने अग सी। टाकरा होया अते ऐसा होया कि अब्दाली डरदा होया मैदान छड़ गया, लाहौर वल भज गया। पर कहानी इत्थे खत्म नहीं हुई।
2: सिखां ने कुछ दुरानी सिपाहियां नूं कैद किया, उन्हां तों अमृत सरोवर साफ करवाया गया, मलबा गंदगी सब कुछ करवाया गया, पर फिर सिखां ने इंसानियत दिखाई, उन्हां नूं रिहा कर दिता। हुण अब्दाली समझ गया सी कि उसने शेर नूं छेड़ दिता है।
0: अब्दाली महीनों तक एक नवा प्लान बनाउंदा रहा। इस वारी उस सब कुछ खत्म कर देना चाहुंदा सी। उसने अफगान फौजां, कश्मीरी सेना अते होर हाकमां नूं इकट्ठा कीता, पर सिख भी हुण तैयार सन। वो जानते सन ये जंग आखरी हो सकती है। ये जंग तय करेगी कि पंजाब की धरती ते कौन रहेगा, खालसा जां अब्दाली।
1: अब्दाली ने अपनी लखां दी फौज नाल गुरदासपुर की धरती नूं घेर लिया।
0: उसके दिल च एक यकीन सी जिमें मराठियां नूं चुकाया, उसे तरह हुण सिखां नूं भी मिटा देवेगा। पर वो भुल गया सी, ये वो कौम है जिहड़ी तलवार तो नहीं गुरु की बाणी तो ताकत लेंदी है। सिख भावें घट गिनती दी सन, पर ना अखां विच डर ना दिल विच खौफ, सिर्फ एक गुरु ते निश्चा। जंग शुरू हुई, पर ये जंग रवायती जंग नहीं सी। जदों अब्दाली दी फौज अग्गे वधी, उन्हां नूं सामने कोई नहीं दिसिया। अचानक जंगलां दी छां चों तूफान वांग कुछ घोड़सवार निकले, बिजली वांग वार कीता ते पलक चपकदे ही गायब हो गए। अब्दाली दी फौज हैरान रह गई। कुछ पल बाद दूजे पासे तो फिर हमला, ते हमलावर फिर गायब। ए सी गुरिल्ला युद्ध, चुपचाप, तेज ते आनंदाज। अब्दाली दी वड्डी फौज छोण जंगला विच पटकन लग पई। जिथे वो जांदे सिख उत्थे नहीं हुंदे, जिथों मुड़दे दूजे पासे हमला हो जांदा। हर पल एक अनजान डर, ते दूजे पासे सिख छोटियां टुकड़ियां विच पर एक दिल एक जान बन के लड़ रहे सन। अब्दाली दी ताकत घटती गई हर हमले नाल, उसका यकीन टुटता गया। वो समझ गया ये लोग आम ने, इन्हां नूं तलवार नाल कदे भी हराया नहीं जा सकता। दिन लंघते गए ते अखीर वो कड़ी आ गई, जदों अब्दाली नूं मनना पिया

0: वार वार हमले किते। उसनू एक पल दी भी चैन नहीं लैन दिती। अब्दाली हुन तंग आ गया। उसने समझ लिया ये धरती हुन उसदे वस्ती नहीं, अते फिर वह मुड़ गया अफगानिस्तान वल। यह सिर्फ एक बादशाह की वापसी नहीं सी, यह सी उसके अहंकार की हार। अते पंजाब की धरती ते एक नवा इतिहास लिखा गया। यह साबित हो गया
1: गुरु का खालसा ना कदे डरता है ना कदे दे झुकता है, चाहे वैरी किन्ना भी वड्डा होवे। अंत विच सच हिम्मत ते विश्वास ही जितते हन। अते इस तरह अब्दाली दा आतंक हमेशा लई खत्म हो गया।

तख्तों पर बैठने वालों की आदतें जब खबर बन जाएं, तख्तों पर बैठने वालों की आदतें जब खबर बन जाएं, तो बदनाम सिर्फ चेहरे नहीं पूरी कौम हो जाए। इस सवाल या लाइना जो हालात इस वेले पंजाब की सियासत या पंजाब नू लेके कल तो बन रहे ने, ये लाइना अक्सर याद आ जांदियां ने। सवाल वड्डा है कि कल पंजाब दी जो तस्वीर पूरे देश च पेश होई कि वह होनी चाहिदी सी, हालांकि उस तस्वीर ते अदे किंतु परंतु है, सरकार बोलण नू तैयार नहीं है। जो बोल रही है तो तर्क इस तरह के दिते जा रहे हैं, वह भी तो पींदा जी, वह भी तो करदा जी।

0: बहुत सारे सवाल ने, क्लैरिफिकेशन नहीं है। पर जिस तरह की घटना कल वापरी है पंजाब की विधानसभा दे विच, तुसी समझ गए होगे मैं किसका जिक्र कर रहा। उस तो बाद एक लंबी चर्चा छिड़ गई है कि पंजाब च मुख्यमंत्री बदलिया जाएगा, कि पंजाब के मुख्यमंत्री के अहुदे ते कोई होर बैठा होना चाहिए। यह मैं नहीं कर रहा, इस सवाल उठे ने कल तो ना लगातार पूरे देश के दे मीडिया के तमाम प्राइम टाइम के जो चर्चा चल रही है पंजाब को लैके, पंजाब के मुख्यमंत्री को लैके। ये जिहड़ियां दो लाइना मैं थोनों दसियां ना कि जब तख्तों पर बैठने वाले की आदतें खबर बन जाएं तो बदनाम सिर्फ चेहरे नहीं पूरी कौम हो जाए, इस सवाल उठ रहे हैं। हालांकि हुण एक वड्डा सवाल यह है कि क्यों होया की कल, कल तो यह वड्डा सवाल है। और उस तो बाद हुण अज वड्डा सवाल उठ रहा है कि कोई तब्दीली होएगी या इसे तरह चलेगा। जो घटना कल हुई है ना उस तो बाद सियासी तौर पर भी कई सवाल ने। खैर मैं हुण मसले ते आना। दरअसल जो इल्जाम कल लगे है जिसका जवाब नहीं दिता गया कि जी मुख्यमंत्री उत्थे शराब पी के आए थे, वीडियोज वायरल हो रही, लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं, मीडिया के चर्चा हो रही है, पर मुख्यमंत्री वालों इस पर कुछ नहीं कहा गया। हाँ एक पत्रकार ने कोशिश की कि जी विरोधियों ने डोप टेस्ट की मांग की, वो तो करते रहेंगे जी, उन्हों का की है, उन्होंने कोई काम नहीं है, ये कह के वो चल गए। पर इन्ना कहन नाल जदों आपां जिम्मेवारी ते बैठे हुंदे आं तां की गल निबड़ जाती है। हुण मैं क्यों कह रहा कि सवाल वड्डा है कि मुख्यमंत्री बदलिया जाएगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के पंजाब के प्रधान सुनील जाखड़ ने मांग कर दी है, मैं नहीं कह रहा अपने वालों, हालांकि ये पंजाब के लोग, मैं जिवें कल भी एक वीडियो कहा सी ना, ये पंजाब के लोग कमेंटा च दसण कि बदलना चाहिए जां नहीं बदलना चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा। पर सवाल वड्डा है कि पार्टी बीजेपी के पंजाब के प्रधान कह रहे जी असी कल गवर्नर को जा रहे हैं, उन्हें अगे मंग रखांगे कि जी अजिहा शख्स मुख्यमंत्री वर्गे अहुदे ते नहीं चाहिए। बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं और कल्ला भारतीय जनता पार्टी नहीं, अकाली दल भी सवाल खड़े कर रहे हैं। हुण ये विरोधी पार्टियां ने, चाहे भारतीय जनता पार्टी है चाहे अकाली दल है, पर पंजाब के लोग की सोच रहे कल तो, जो इमेज जो नैरेटिव जो परसैप्शन कल तो पंजाब का पंजाबियों का पूरे देश बनया, गलत या सही, सहीता तो खैर काटा ही मार दो, जो बनया तो तुहानू भी पता की बनया, मैनू कहने की लोड़ नहीं है कि इहदे नाल वाकई पंजाब की इमेज खराब हुई है। हुण सुनील जाखड़ कह रहे जी बहुत सारे इल्जाम उन्होंने लाए, बहुत सारे, वो कह रहे जी मुख्यमंत्री के अहुदे के लायक नहीं है, तो भगवंत मान को मुख्यमंत्री के अहुदे तो हटाना चाहिए, मतलब उन्होंने तो जो शब्द वरते मैं इस वीडियो च नहीं वरतूंगा। हाँ सुनवा देना बयान थोड़ा पूरा की कुछ कहा गया।
1: असि गवर्नर साहब नू मिल रहा जी, टाइम हो नहीं सकया, कल सवेर का टाइम दिता है, यह सारिया गलों का असं जाके उ खुलासा करांगे। तो जो कुछ विधानसभा से कल होया, जिहड़े हालात के मुख्यमंत्री सीगे, वो पंजाब के मत्थे ते एक बहुत वड्डा कलंक है। साडा रौला एक मतलब नशेड़ी बंदा उस कुर्सी के नाम बैठे, साडा तो इन्ना मुख्यमंत्री शुड बी रिप्लेस्ड, their party should be advised or however the governor can influence them, call Kejriwal over or whatever he deems fit in his position, he cannot take a step like that, but we will request him that such a chief minister is not in the best of interest of the state and Punjab cannot be left at his mercy.
0: So ki kuch kiya ja raha hai ke ji nasheedi, pata nahi ki kiya ja raha hai, oh tusi sun liya, main nahi kahunga agge aur, पर की इस तरह का परसैप्शन, इस तरह की इमेज, इस तरह का नैरेटिव सैट करके की विरोधी पार्टियां पंजाब लई अपना अगला बेस तैयार कर रही ना, वाकई वाजब है मंग है। क्योंकि कल तो मीडिया तो अलावा भी आम आदमी पार्टी के आप दे लीडर बहुत रिलायबल सोर्सेस तो जानकारी दे रहा, तो बहुत सारे MLAs इस गल तो चिंतित ने, भावें कि कल आम आदमी पार्टी ने अपना फ्लोर टैसट पास कर लिया, पर विरोधियों ने जोड़े एक होर टैसट की मांग की वो सैलेंट है डोप टैसट। और उस तो बाद आम आदमी पार्टी के MLAs दियाँ कल शाम तक जो कि चंडीगढ़ से विधानसभा सैशन करके बहुत मीटिंग हुई, और हर मीटिंग यानी कि ग्रुप्स के यही चर्चा सी कि हो की गया, यानी कि आम आदमी पार्टी अपने वालों जो एक परसैप्शन लैके चलती सी ना कि MLAs वोटा नहीं पईआं, वोट

0: मेरे डेप्टी लीडर सन कांग्रेस
1: जी,
0: वो भी खुशी ना नहीं गए, वो भी कई जमातों नाल इन टच ने, वो भी इत्थे नहीं रहने। तीजे मीत हेर साहब है ने, मेरा ख्याल ये भी तुसी 10-15-20 दिन या महीने सभा च तुसी वेखोगे, जिद्दण भाजपा नूं ग्रीन सिग्नल दे देगा ये सारिया दा विलंब ही हो जाएगा।
1: पर पिछले कुछ दिनों से भाजपा साहब लगातार ये गल्लां सुनन नूं मिल रही ने कि कोई कहिंदा जी 50 MLA बीजेपी जाण नूं तैयार ने, कोई 60 कहिंदा है, कोई 40 कह रहा। तुहाडे कोल की इनफॉर्मेशन है कि आम आदमी पार्टी दे बहुगिणती MLA बीजेपी जाण नूं तैयार ने?
0: क्योंकि मैं तो क्लोजली फॉलो करना नैशनल पॉलिटिक्स नूं ते इन्हां नूं भी, मैं तुहानूं हैरानी वाली गल तुहानूं कल्लिआं नाल शेयर कर लगा। तकरीबन 50 MLA आम आदमी पार्टी दे पिछले 3 महीने तो
1: जी
0: बीजेपी की लीडरशिप नाल इन टच ने, ते जाके दिल्ली मिल भी आए ने।
1: अच्छा जी,
0: इन्हां दी जो इन्हां दी कीमत कूमत है सी उह तय हो चुकी है। मिनिमम 50 बंदे मिल गए ने अजे तक, ना अरविंद केजरीवाल साहब नूं ना भगवंत मान जी नूं पता लगा। ते तुसीं आपे हिसाब ला लो कि इन्हां दा बनना की है। 5 तरीक दे रिजल्ट डीक रही है भाजपा, जिद्दण रिजल्ट बाहरले सूबिआं दे आ गए, जे ते फेवरेबल होए ते इह ओपरेशन छेती लॉन्च हो जाणा
1: जी।
0: ते जे इन्हां नूं सैटबैक पहुँच गई बंगाल दे विचों, ते फिर हो सकदा थोड़ा जिहा लेट कर। बट मैं तुहानूं यकीन दवाना चाहना, MLA ते वेखो हुण इन्हां कोल रहिणे नहीं, जो पोजीशन चल रही है 99% आम आदमी पार्टी दे MLA भगवंत मान दे डेडली गेस्ट।
1: वो क्यों भगवंत मान तो नाराज़ क्यों होंगे जी MLA?
0: तो ये जलंधर तुहानूं पता किहदे घर च रह रहे भगवंत मान?
1: किहदे घर रह रहे?
0: पुराना एक कमिश्नरेट हाउस सी
1: जी जी जी,
0: जिहनूं इहने रीफर्बिश करके तो उत्थे जनरल डायर दा घर सी। जनरल डायर दी हुण जिहड़ी आत्मा इहदे विच चली गई, इहदा बिहेवियर जनरल डायर वर्गा ही है, ते जनरल डायर दे बिहेवियर नूं उहनां दी अपणियां फोर्सेस भी कदी कबूलदियां नहीं। सो इहनां दे MLA जिहड़े ने, वेखो मैं तां इक्को गल दी राय देना चाहूंगा केजरीवाल साहब नूं कि जे केजरीवाल साहब अजे 5-4 महीने कढ़ने ने तुसीं
1: जी,
0: ते सारिआं नूं पहले जनरल डायर नूं तोर दो। जिद्दण महाराष्ट्र दा जहाज आके मोहाली लगा, पहली सवारी जिहड़ी चढ़नी उह एकनाथ शिंदे ही होणा भगवंत।
1: पर भगवंत मान साहब तो यह गल कह रहे हैं कि कोई रुपया जिहड़ा ने उह बणिआ नहीं, भी जिहड़ा मैनूं खरीद ले, मेरे घर कोई विजिलेंस ED जां कोई भी एजेंसी आ जाए ते मैं तां पाक साफ हां, उह कहिंदे आ जाओ मैनूं खरीद के
0: दिखाओ। कई सालां दा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नाल शाहजी दे नाल इहदा इन टच है, सारा कुछ उहनां नाल इह तय करके काम होएगा, ऑलरेडी हो रहा, ही इज ऑलरेडी इन टच विद देम। इहने उधर जाणा ही जाणा, इह जिहड़ा कहिंदा सी मैं राष्ट्रपति भवन दे विच सारे लैके जाने, मैनूं उदण ही यह डर सी कि राष्ट्रपति भवन च इकट्ठे करके ते बाहर दरवाजे उन्हें बंद कर लेने भवन दे, ये सारे बंदे ही उत्थे छड्ड आणे। दिल्ली में सरकार किहदी है? नंदप्रीत जी तुसीं दस्सो,
1: बीजेपी दी है।
0: बीजेपी दी
1: जी,
0: ते राष्ट्रपति भवन जे लै जांदा सारे इकट्ठे करके ते किसे नूं वापस आण दी लोड़ वी नहीं सी रहि जाणी। ये बेसिकली एक सोची समझी रणनीति सी कि इत्थों कढ के सारे उत्थे लै जाओ। वेखो अमरिंदर सिंह ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ 2 ਤਰੀਕੇ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਦੋਂ CNF ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਘੇਰੀਏ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੀਏ
1: ਜੀ।
0: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰਕੇ ਅੰਬਾਲੇ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਟਪਾ ਦਿੱਤਾ
1: ਜੀ,
0: ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਅਖੀਰ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ
1: ਜੀ?
0: ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੂ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਕੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਵਰਡਿੰਗ ਰਾਘਵ ਚੱਢੇ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਕਰੰਸੀ ਬਣੀ ਹੈ
1: ਜੀ,
0: ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਘਵ ਚੱਢੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕੇ
1: ਜੀ।
0: ਸੋ ਸੇਮ ਬਿਆਨ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਜਿਹੜੀ 'ਚ ਵਿਕਿਆ ਉਸੇ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ।
1: ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ,
0: ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨੰਦਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜੋ ਕੁਝ CMO ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਕੋਇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ

हार शंख जप शंख पाओ शंख पूजा शंख तप ताओ आशंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास शंख भगत गुण ज्ञान विचार शंख सती असंख दातार असंख सूर मोपा।

गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुकत दायक काम। आप रूप अमीक अनुस्तत एक पुरख अवतूत, गर्भ गंजन सर्व भंजन आदि रूप असूत। अंग हीना पंग अनात्म एक पुरख अपार, सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रत।

चत्र चक्र करता चत्र चक्र हरता चत्र चक्र दाने चत्र चक्र जाने चत्र चक्र वर्ती चत्र चक्र परती चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र मान्य चत्र चक्र दान्य चाचरी शांद ना शत्र।

केसर बंगदली है, केसर बत्र मान्य, केसर बत्र दान्य, केसर बत्र गौन, केसर बत्र पौन, केसर बत्र दीन, केसर बत्र लीन, केसर बत्र जाहु, केसर बत्र पाहु, केसर बत्र देश, केसर बत्र पेश, केसर बत्र काल, केसर बत्र पाल, केसर बत्र हंता, केसर बत्र गंता, केसर बत्र पेखी, केसर बत्र पेखी, केसर बत्र काज, केसर बत्र राज्य, केसर बत्र सुख, केसर बत्र पुख, केसर बत्र त्राण, केसर बत्र प्राण, केसर बत्र देश, केसर बत्र पेश, केसर बत्र मान्य, सदैव प्रधान्य, केसर बत्र जाप्य, केसर बत्र थाप्य, केसर बत्र पान्य, केसर बत्र मान्य, केसर बत्र इंद्र, केसर बत्र चंद्र, केसर बंकली।

अनित हैं सुनित हैं, अजात हैं अजाद हैं, चरपट शांतत्व प्रसाद। सर्वं हन्ता सर्वं गन्ता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं तर्मं सर्वं

है। विश्वंबर है, करुणालय है, नृपनायक है, सरपायक है, पहुपंजन है, अर्गंजन है, रिपतापन है, जप जापन है, अकलंकृत है, सर

भेटै। हर का नाम जन को मुक्त सुजुगत, हर का नाम जन को त्रिपद भुगतै। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत का परे न पांगे। हर का नाम जन की बड़ियाई, हर का नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहीं वियोग। जन राता हर नाम की सेवा, नान पूजे हर हर देवा। हर हर जन के माल खजीना, हर तन जन को आप प्रभ दीना। हर हर जन के ओर सतानी, हर प्रताप जन अवरना जानी। बोध बोध जन हर असराते, सुन समाध नाम रसमाते। आठ पैर जन हर हर जपे, हर का भगत प्रकट नहीं छपे। हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संकेत तरे। पार जाते हर को नाम काम तेन, हर हर गुण गावे। सबसे उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत हृदय वसे, संत प्रताप दूरत सबनसे। संत का संवड़ पागी पाइये, संत की सेवा नाम त्याइये। नाम तुल कछ अवरना होई, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोई। श्लोक बहु सर्व सिमृति, पेके सर्व टंडोले। पूज सनाही हर हरे, नानक नाम अमूल अष्टपदी। जाप तप ज्ञान सब त्यान, खर शास्त्र समृद्ध बख्यान। जोग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया, सकल त्याग मन मदि फिरिया। अन्य प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहुरतना। शरीर कटाए होमे कराती, वर्तने में करह बहुपाती। नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपी एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिर चिरदी वह, महा उदा तपी सुरथी वह। अगन माय होमद प्राण, कनक असो हैवर पूमदान। न्योली कर्म करे बो आसन, जैन मार्ग संजम असाधन। निमक निमकर शरीर कटावे, तो पी हो मैं मैल न जावे। हर के नाम समसर कचनाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे। मन कामना तीर्थ दे छुटे, गर्भ गुमान न मन ते हुटे। सोच करे दिन सर रात, मन की मैल न तन ते जाते। इस दही को बहु साधना करे, मन ते कभु न बिखे टरे। जल तुवे बहु देह रीत, सुध का होय काति पीते। मन हर के नाम की महिमा ऊते, नानक नाम उदरे पतत बहुमूत। बहु स्याण जम का भो पियापे, अनक जतन कर तृष्णा त्रापे। पेख अनेक अग्नि बुझे, कूट पाव दरगह नि सिजे। छूट सनाही उपयाल, मोह व्यापे माया जाल। अवर करतूस अगली जमडान, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने। हर का नाम जब दुख जाए, नानक बोले स सुपाए। चार पदार्थ जे को मांगे, साधना की सेवा लागे। जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सदगावे। जे को अपनी शोभा लोरे, साध संग हो मैं छोरे। जे को जरम ते डरे, साधना की सरनी परे। जिस जन को प्रभु दर्द प्यासा, नानता के बल बल जासा। सगल पुरख में वह पुरख प्रदान, साथ संजा का मिटे अबान। आपस को तो जाने नीचा, सोकनी सब त्यूचा। जा का मन हुई सगल की रीना, हर हर नाम तिन काट कर चीना। मन अपने ते बुरा मिटाना, पेख सगल श्रेष्ठ साधना। सुख दुख जन समृष्टेता, नान पा पुनः लेपा। निरतर को तन तेरो नाव निथावे, को नाव तेरा थाओ। निमाने कुप्रभ तेरो मान, सकल कटा को देव दान। कर्ण करावन हार स्वामी, सकल कटा के अंतर जामे। अपनी गद में जानो आपे, अपन संग आप प्रभराते। तुमरी उस तुम ते होए, नानक बरना जान सकोए। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। सगल क्रिया में उत्तम क्रिया, सात संग दुर्मत मल हिरिया। सगल उद में उदम पुला, हर का नाम जपो जी सदा। सगल बानी में अमृत बानी, हर को जसुन रसन बुखानी। सगल थान ते उत्तम थान, नानक।

अष्टपदी रमैया के गुणचित पुराने कवन मूल से कवन दृष्टा ने जिनतु सात स्वार सिंगारिया गर्व अगर मह जिन उबारिया बार विवस्था तुदे प्यारा दूध पर जोबन भोजन सुख सूद बिरध पियाओ प्रसाख सैन मुख पियाओ बैठ कुदैन हे निर्गुण गुण कछु न बूझे बख्श लियो तो नानक सीजे जय प्रसाद तर उपर सुख बसै सुत प्रात बीत बंता संग हसै जय प्रसाद पीवै शीतल जला सुखदाई पवन पाव अमूला जय प्रसाद भोगे सबरसा सगल समग्री संग साध बसा दीने हस पाव करने तरसना तिस त्याग अवर संगरचना ऐसे दोख मुड़ अंध ब्यापे नानक काढ़ लियो प्रभ आपे आदि अंत राखन हारती सुप्रीत न करै गवारे जाकी सेवा नव निध पावे तासे मुड़ा मर नी लावे जो ठाकुर सद सदा हजूरे ताको अंदा जन दूरे जाकी टहल पावे दरगह मान तिस बिसारा मुगद अजाने सदा सदा एह पुलण हार नानक राखन हार अपारे रतन त्याग कोटी संग रचै साच छूट छूट संग बचै जो छटन सो असर कर मान जो होवन सो दूर पराने छोड़ जाए जिसका शर्म करै संग सहाय तिस पर हरै चंदन लेप उतारे तोय गर्द प्रीत पसम संग होए अंध कूप में पद विकराल नानक काठ रूप प्रभ दयाले करतूत पशु के मान जात लोग पुचारा करै दिन रात बाहर पेखन त्रमल बाय छपतनाय कछ करै छपाया बाहर ज्ञान त्यानि स्नान अंतर व्यापी लोग सुवाने अंतर अग्न बाहर तन स्वा गल पाथर कैसे तरे।

अथा जाके अंतर बसे प्रभे आप नानक तेजन सह समाते सुन अंधा कैसे मार्ग पावे कर गए लिहो ओढ़ बहावे कहाँ बुजारत बुझे डूरा निष्कय तो समझ पूरा कहाँ विष्णुपद गावे गुंग जतन करे तो भी सुर भांगे कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं होत वास गवने करतार करना मैं दिन बिनती करे नान तुमरी कृपा तरे संग सहाय स्वाभिन चीत जो बैरायता सुप्रीत बलुआ के ग्रह पीतर बसे अनंत किल माय रंग रस है दृढ़ कर मान मन प्रतीत काल न आवे मूढ़ चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महलोभ त्रोह इहाँ जुगत बिहने के जन्म नानक राख ले हो आपन कर कर्म तू ठाकुर तुम प्यार दास जीव पिण सब तेरी रास तुम आद पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा मैं सुख नेरे कोई ना जाने तुमरा अंत उच्चे ते उच्चा भगवंत सगल समग्री तुमरा सूत्र तारी तुम ते हो स्वाग्यकारी तुमरी गत में तुम ही जानी नानक दास दा कुर्बानी श्लोक देन हार प्रभ छोड़ के लागे अन सुहाए नानक कहो न सीजी बिन नामे पत जाई अष्टपदी दस बसूले पाछे पावे एक वस्त कर बिखुड़ गुआवे एक पीना दे दस पीहर ले तो मुड़ा कहू कह करे जिस ठाकुर सो नाही चारा ताकु कि जे सर नमस्कार जाके मन लागा पर मिठा सर्व सुख ता हुमन उठा जिजन अपना हुक्म मनाया सर्व सुख नानक तन पाया अगंत सह अपनी देरास खात पीत बरत आनंद उलास अपनी मन कछ बोहर सहले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवे बोहर उसका विश्वास न होवे जिसकी बस दिशा अग्ञा रखे प्रभ की अज्ञा मान माथ है उससे चौगुन करे निहाल नानक सब सदा दयाल अनक पात्मा गेहे सर पर हो जान अनेत बिरख की छाया सो रंग लावे ओ बिन स ओ मन पछतावे जो दिशा सुचालन हार लपट रहो तह अंध अंधारे पटाओ सो जो लावे नेहता को हाथ ना वे केहे मन हर के नाम की प्री सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या तन तन कुटम सुबाय मिथ्य हो मैं ममता माया मिथ्या रा जोबन तन मान मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रा सहसी अस बसरा मिथ्या रंग संग माया पेक हस्सा मिथ्या त्रोह मान मिथ्या सुप्र करत गुमान अस्त्र भग साध की सर नानक जप जप जीव हर के चरण मिथ्या सरवण पर निंदा सुना मिथ्या हथ पर दर्व को हिर मिथ्या नेत्र पेखत पर त्राय रूपाद मिथ्या रसना पूज नान स्वाद मिथ्या चर पर विकार कुतावे मिथ्या मन पर लोभ लुभावे मिथ्या तन ही पर उपकारा मिथ्या बास लेत विकार बिन बुझे मिथ्या सब पाए सफल दे नानक हर हर नाम ले व्यर्थी स्वागत की आरदा साध बिना क्या हो वो सूचा बिरथा नाम बिना तनयाद मुखावता का दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाय मेघ बिना दुखे ती जाए गोविंद भजन बिन बिरते सब काम ज्यो कृपन के निरारदा में तन तन ते जन जह कट बस हर नाव नानता के बल बल जाओ रहते अवर कछवर कमावत महने प्रीत मुखो गण लावत जानन हार प्रभु प्रवीण बाहर पेख न कहूँ पीने अवर उदेश अपना कर जब जन्म मरे जिसका अंतर बसा निरंकार तिसकी सिख तरह संसारे जो तुम पाने तिन प्रभु जाता नान कुन जन चरण पराता करो बिनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया पै मान आपे आप कर तुन बेरा किसे दूर दिनावत किसे बजावत नेरा उपाव सियान सगल तेरा सबका जन आत्म की रहते जिस पाव तिस लय लड़ाई थान थनंत रहा समाये सो सेवक जिस कृपा करी निमख निमख जप नानक हरि श्लोक काम क्रोध हरि लोभ मोह बिन सजाए अहमेव नान प्रभु शरण आगति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदे जय प्रसाद छति अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन वाहे जय प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे जय प्रसाद बसे सुख मंदिर तिसे त्याय सदा मन अंदर जय प्रसाद गृह संग सुख बसरा आठ पैर सिमरो तुसरा सरा जय प्रसाद रंग रस भोग नान सदा तिया ये तिया मन जोगे जय प्रसाद पाठ पटबर हडावे तिसे त्या कत अवलु पावे जय प्रसाद सुख से सोई जय मन आठ पैर ताका जस गावी जय जय प्रसाद तुझ सबको मान मुखता को जस रसन बखाना जय प्रसाद तेरु रहता तन मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जब दरगह मान पावे नान पा सिद्धि कर जावे जय प्रसाद अरु कंचन देहि लिबलाहु तिस राम सनेहि जय प्रसाद तेरा उला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहते जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभुता कह जय प्रसाद तुझको ना पहुँचे मन सा सा सिमरु प्रभु ऊचे जय प्रसाद पाए दुर्लभ दे नान ताकि भगत करे जय प्रसाद आपु खर पहरी जय मन तिस सिमरत किवाल उसकी जय जय प्रसाद असवह ससवारी मन तिस प्रभु को कभु न बिसारी जय प्रसाद बाग मिलख तना राग प्रो प्रभु अपने मना जिन तेरी मन बणत बनाई उठत बैठ सत तिसे त्याई तिसे त्याज एक अलख इह ओह नान तेरी रखे जय प्रसाद करे पुन बहुदान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान
जय प्रसाद तू आचार विहारी तिस प्रभु को साथ साथ चितारी। जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सोपर सिमर सदा अनूप है। जय प्रसाद तेरी निकी जा सोपर सिमर सदा निरात है। जय प्रसाद तेरी पात्र है गुरु।

ज्ञानी कह कर सदा आनंद है। ब्रह्म ज्ञानी सुख सह निवास नान, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश है। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता। ब्रह्म ज्ञानी का हुई अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत है। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ पागी पाइये, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये। ब्रह्म ज्ञानी को खोज में ही सनान, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर है। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाना भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश है। ब्रह्म ज्ञानी का कथा न जाए अदा खरे, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर है। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाना, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाना। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पाना, ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार है। ब्रह्म ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सजीव है नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुक्त जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब उपरहात है। ब्रह्म ज्ञानी का सगला कार्य, ब्रह्म

सद ही रह समाये आप उपदेश समझया पापी रचिय सब के साथ है। आप गिनुआ पर विस्तार सब कुछ उसका ओह करने हारे उसे पिन कहो कुछ होए थान थन तरीके सोए अपने चल जाप करने हर कोत करे रंग अपारे मन में आप मन अपने माहे नान कीमत कहना जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद किना बख्याने सच सच सच सब किना कूड़ मदे किना बिरले चीना पला पला पला तेरे रूप अद सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी कट कट सुनी सरवण बखयाड़ी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत सलोके संत शरण जो जन परै सोजन उदरण हार संत की निदा नानका बोहर बोहर अवतार पदे संत का दुखन हर जा करे संत का दुखन जब तनी छुटे संत का दुखन सुख सब जाए संत का दुखन नरक मह पाए संत का दुखन मत हुए मिलीन संत का दुखन सोभा तेहीन है संत के हथ को रख न कोई संत का दुखन थान प्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जिक्र नान संत संग निंदक पीतर संत के दुखन ते मुख पवे संतन के दुखन काग जो लवे संतन के दुखन सर्प जोन पाए संत के दुखन त्रिग जोन कृपाए संत के दुखन तृष्णा में जले संत के दुखन सब को छले संत के दुखन ते समझाए संत के दुखन नीच नचाए संत दुखी का था को नाहि नान संत पावे तो ही पिगत पाहे संत का निंदक महत ताई संत का निंदक खिन टिक न पाई संत का निंदक महत्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज तिहीन संत का निंदक दुखी हर दीन है संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा बिजोग संत के निंदा दुख में दुख नान संत पावे ता उसका भी होय मोके संत का दुखी सदा अपवित्र संत का दुखी किसे का नहीं मित संत के दुखी को डान लागे संत के दुखी को सब त्यागे संत का दुखी महंकारी संत का दुखी सदा बिकारी संत का दुखी जन में मरे संत की दुख न सुख ते टरे संत के दुखी को ना ही ठाव नान संत पावे ता नहीं फिलाए संत का दुखी अद बीत टूटे संत का दुखी किता काल न पहुंचे संत के दुखी को ध्यान परमाइये संत का दुखी उजड़ पाइये संत का दुखी अंतर ते थोथा जीव साथ बिना मृत की लोथा संत के दुखी की जड़ कुछ नाई अपने बीज आप ही खाए संत के दुखी को अवर न रखन हारे नान संत पावेता ले उबारे संत का दुखी यूं बिललाए जो जल भी हो मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजा जो पाव इंद्र नहीं त्रापे संत का दुखी छुटा अकेला जीव बुआड़ तिलखित माही दुहेला संत का दुखी तरफ दरह संत का दुखी सद मिथ्या कहते कीर्तन निंदका तुर ही पया नानक जो तिस पावे सोई थी संत का दुखी बिगड़ डूब हो जाए संत का दुखी कौ दरगह मिले सजाए संत का दुखी सदा सकाई संत का दुखी न मरे न जिवाइये संत के दुखी की पूजन आशा संत का दुखी उठ चले निराशा संत का दुख न तृष्ट कोई जैसा पावे तैसा कोई होए पया कर्तना मेटा कोई नानक जाने सच्चा सोए सब कर जिसके करने हार सदा सत इसको नमस्कार प्रभ की उसत करो दिन रात जिस सात गिरा से सब कुछ वर्त जिसका किया जैसा करे तैसा को थी अपना खेला करने हार दूसर कौन कहे बिचारे जिसने कृपा करे सप नाम दे बड़भागी नानक जन से सलोके तजो सियान सुरजन सिमरो हर हर राय एक आस हर मन रखो चलो मार गोबिंद मिटे पाप जपी हर बिंद कर हर कर्म सर्वन हर कथा हर दर्ग नानक उजल मथा बड़भागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो कर है विचार से तनवंत गनी संसारे मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पुछान इत की ओ सो जी जान नाम संग जिसका मन मान्य नानक तिन निरंजन जाने गुरु प्रसाद अपने आप सुझे जिसकी जानो तृष्णा बुझे सत्संग हर हर जस कहत सर्वजोग त्यो हर जन रहत आंजन कीर्तन केवल बख्यान ग्रीष्मय सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन किया सा जिसकी कटिया जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसन लगे दुखे जिसको हर प्रभ मन चित्यावे सो संत सो हेला नहीं डुलावे जिस प्रभ अपनी कृपा करे सो सेवक कहो किससे डरे जैसा सा तैसा दृष्टा अपने कर में अब समाया सोध सोध सोध सीजिए गुरु प्रसाद सबुझे जब देखो तब सब कुछ मूल नान सो सुखम सोय सूल न किस जन्मे न किस मरे अपन चल जाप ही करे आवन जावन दृष्टा दृष्टा के कारी तारी सब श्रेष्ठ आपे आप सकल में आप अनक जुगत रचता भूथापे अब नासी नाई किस खंड तारन तारे हो ब्रह्मांडे
अलख पे पुरख प्रता आप जपय तनानक जापे जिन प्रजात सो शोभा बंद सगल संसार उतरे तन मनते प्रभु के सेव सगल उदारण प्रभु के सेवक दुख विसारण आपे मेले कृपाल गुरु का शब्द जपय निहाले उनकी सेवा सोई लागा जिसनु कृपा करे बड़भागै नाम जपत पावि श्राव नानक तिन पुरख को उत्तम करमान जो किछ करे सो प्रभु कै रंग सदा सदा बसै हर संगे सह सपाए होवे सोहे करणे हर पछाणे सोए प्रभु का किया जन मीट लगाना।

जैसा तैसा दृष्टा न, जिससे उपजे तिस माए समाये, ओ सुख निदा उन्हों बन आए। आपस को आप दीनो मान, नान प्रभ जन एको जान। श्लोके सर्वकला भरपूर प्रभ बिरथा जनन हारे, जाके सिमरण उदरिये नानक तिस बलिहारेश्वरी। टूटी गणन हर गोपाल, सर्व दिया पे प्रतपाले। सगल की चिंता जिस मन माहे, तिससे बिरथा कोई नाहे। रे मन मेरे सदा हरजा अवनासी, प्रभ आपे आपे। अपने किया कुछ ना होए, जिस उपरानी रोचक होए। तिस बिर नाहि तेरे किस काम गत नान, जप एक हर नाम रूपवंत होए। नाहि मोहे प्रभ की जो सगल कड़सो है, तनमंता हुए क्या कुगर्भ। जैसा कि तिस का दिया दर्भ, असुरा जी को कहावे प्रभ की कला बिना कहता वे। जे को होय बह दतार, तिस दिन हर जान गवारति। जिस गुरप्रसाद टुटे हो रोग, नानक सो जन सदा अरोगे। ज्यो मंदिर को थम थमन, त्यो गुरु के शब्द मन असमन। ज्यो पाखा नाम चिड़तर, प्राणी गुरु चरण लगत निसरै। ज्योंद कर दीपक प्रगास, गुरुदन सदेख मन होय विगास। ज्यो महा उदयर महमार्ग पावे, तू साधु संग मिल जो प्रगटावे। तिन संतन की बाचो तू नानक की हलोचा, पुर मन मुर काहे बिन लाइये। पूर्व लिखा कर लिखे पाइए, दुख सुख प्रभ देवन हार। अवर त्याग तू तिसे चितार, जो कछु करे सोई सुखमान भूला। काहे फिरे अजाने कौन बसाई, तेरे संग लपट रहो। रस लोभी पतंग राम नाम जप, हृदय मह नान पासेती कर जाहे। जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। तज मान लिहो मन मोल, राम नाम हृदय मह तोले। लाद के संत संग चाले, अवर त्याग बिख्या जंजाले। तन तन कहे सब कोई, मुख उजल हर दर गए सोए। हे व्यापार बिरला व्यापार, नानता के सद बल हारे। चरण साध गे तोय तोय पियो, अर्प साध गोपना जियो। साध की तूर करो स्नान, साध ऊपर जाइए कुर्बान है। साध सेवा वड़ भागी पाइए, साध संग हर कीर्तन गाइए। अनक बिघन ते साधु राखे, हर गुण गाए अमृत रस तक है। ओट गई संत दरियाए, सर्व सुख नान ते पाया। मृतक को जबालन हार, भुखे को देवत आधारे। सर्व दान जा की दृष्टि माए, पूर्व लिखे का लहना पाहे। सबके तिसका उकरण जोग, तिस बिन दूसर हुआ न होगे। जप जन सदा सदा दिन रहनी, सब त्यूच निर्मल एक करनी। कर कृपा जिसको नाम दिया, नान सो जन निर्मल थी। जाके मन गुर की प्रतीत, तिस जनावे हर प्रवचीत। भगत भगत सुनिए तेह लोए, जाके हृदय एक होए। सच करनी सच ताकि रहते, सच हृदय सदमुख कहते। साची दृशाता कार।

दर्शन सत सत पे कन्हार नाम सत सत यवन हारे आप सत सत सब तारी आपे गुण आपे गुणकारी सब सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत जस सुनता भोजन हार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत सुरूर दय जन माने कर्ण कराम तनमूल पुछाने जाकर जब विश्वा प्रभ आया तत ज्ञान तिस मन प्रगटाया पैते निरप हुए बसाना जिसते उपजे तिस माई समाना बस माले बस गडाई ताको पिना कहना जाए बूझे भोजन हार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक कह मन प्रतीत ठाकुर के सेवक के निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जाना संग प्रभु का सेव नाम करांगे सेवक को प्रभु पालन हारा सेवक की राख निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभु तारे नानक सो सेवक साथ साथ समारे अपने जन का पर्दा ढाके अपने सेवक की सर पर रखे अपने दास को दे बढ़ाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक को आप रखे ताकि कदमत कोई ना रखे प्रभु के सेवक को ना पहुंचे प्रभु के सेव ऊंचे ऊंचे जो पर अपनी सेवा लाए नानक सो सेवक दया दिस प्रगटाया नेकी कीरी मैं कल राखे पसम करे नस्कर कोट लाख है जिसका सास न कटते आप ताकू राख देख रहा थे मान जतन कर दबो पात जिसके कर्तव्य व्यर्थ जाते मारे न राखे वरना कोई सर्व जिया करा कर सोए काहे सोच करे रे प्राणी जपनान पर अलख विडाणी बारंबार बार प्रभ जपिए पी अमृते मन तन त्रपिए नाम रतन जिन गुरुमुख पाया तिससे किस अवर नाहि दृष्टाया नाम तन नाम रूप रंग नाम सुख हर राम का संग नाम रस जो जन तृप्ता ने मंत्र नाम में नाम समाने उठ बैठ सोत नाम को नानक जन के सदका में बोलो जस बदन रात प्रभ अपने जन की निदात करे पगदा तुमके चाय प्र अपने सुर है समाये जो हुआ हो वो सुजाने प्रभ ने को हुक्म बचाना जिसकी मैं कौन बखान जिसका गुण का एक न जाना आठ पैर प्रभ बसे हजूरी को नान से जन पूरे मन मेरी तिन की उठ ले मंत्र अपना तिन जन दे जिन जन अपना प्रभु पुछाता सो जन सर्व सुख का दाता जिसकी शरण सर्व सुख पावे जिसका दर सब पाप मिटावे अवर सियान सगली छाड़ते जन की तू सेवा लागे।

दर्शन सत सत पे कन्हा नाम सत सत्या मनहारे आप सत सत सवतरिया पे गुणा पे गुणकारी शब सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत जसुंता भोजन हर को सत सब होय नान सत सत प्रभ सोय सत सुरुदय दिन मान्य करण कराम त्रिमूल पुछाने जाकर विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तिस्मन प्रगटाया पैते निरपो हुए बसाना जिसते उपजे तिस्माय समाना बस मायले बस गडाई ताको पे ना कहना जाई बुझे बुझन हर विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक का मन प्रति ठाकुर के सेवक के निर्मल रहित ठाकुर को सेवक जाना संग प्रभु का सेवक नाम करांगे सेवक को प्रभु पालन हारा सेवक की रखे निरंकार सो सेवक जिस दया प्रभु धारे नानक कोई परमेश्वर के प्यारे अपने जन का पर्दा टाके अपने सेवक की सर पर रखे अपने दास को दे बढ़ाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपत रखे ताकि गत भेद कोई ना लखे प्रभु के सेवक को न पहुँचे प्रभु के सेवक उच्चे जो प्रभु अपनी सेवा लाए नान सो सेवक जय दिस प्रगटाया नेकी गिरी मह कल रखे पसम करे लश्कर कोट लाखे जिसका शासन कर ताप ताकु रख देकर हाथ मानव जत्र कर्तव्य पात इसके कर्तव्य से जाते मारे न रखे अपना कोई सर्व जीव का रखा सोए काहे शोध करे रे प्राणी जप नान प्रभु अलख विडाणी बारंबार बार प्रभु जपिए पिय अमृत एह मन तंत्र पिए नाम रतन जिन गुरु पाया तिसके शब नाही दृष्टाया नाम तर नाम गुरु प्रंग नाम सुख हर नाम का संग नाम रस जो जंत्र उतारने मंत्र नाम मैं नाम समाने उठत बैठ सुभत नाम कोह नाम जन के सदकाम बोलो जस जीवत दात प्र अपने जन की नी दाते करे भगदात्म के चाय प्र अपने सुर है समाये जो हुआ हु वो सुजान प्र अपने का हुक्म पछान जिसकी मैं मैं कौन बखानू जिसका गुण का एक ना जानू आठ पहर प्रभ बसे हजूरे कोह नान से जन पूरे मन मेरी तिनकी उठ ले मंत्र अपना तिन जन दे जिन जन अपना प्रभु पुछाता सो जन सर्व थोक का दाता जिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसका दर सब पा मिटावे आवर स्यान सगली छाड़ ति जन की तू सेवा लाग आवन जानना हो भी तेरा नान तिस जन के पूजो सद पैरा स्लोके सतपुरख जिन जाने सतगुरु तिसका नाओ तिसके संग सिख उदर है नानक हर गुण गोष्ट बदी सतगुर सिख की कृपा प्रतपाल सेवक गुरु सदा दयाल सिख की गुरु दुरमत मन हिरे गुरु बचनी हर नाम उतरे सतगुर सिख के बंधन कटे गुरु का सिख विकार ते हटे सतगुर सिख को नाम तन दे गुरु का सिबड़ पागी है सतगुर सिख हल्द पल सवारे नान सतगुर सिख को जी नाल संवारे गुरु के ग्रह सेवक जो रहे गुरु की आज्ञा मन में सह आपस को कर कछ न जनावे हर हर नाम हृदय सत्यावे मन बेचे सतगुरु के पाते सेवक के कार्य रास सेवा करत हुए ने काम में जिसको हो प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिसे आप करे नान सो सेवक गुरु की मत ले बीस बीसवे गुरु का मन मान है सो सेवक परमेश्वर की गज जान है सो सतगुरु जिस हृदय हर नाव अनक बार गुरु को बल जाओ सर्वदान जी का दाता अठ पहर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म एक के आप नहीं किस परम है सह स्यान पाले अन जाइए नानक सगुरु बड़भागी पाइए सफल दर्शन पे खुद पुनीत है पर सचन गत निर्मल रीत है पेट संग्राम गुण रवे पार ब्रह्म की दर गवे सुनकर वचन करण आकार ने मन संतोख आत्म पतिया ने पूरा गुरु खोजा का मंत्र अमृत दृष्ट पे के हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नान जित पावे तिस लय मिलाए जिहवा एक सत अनेक सतपुर पूर्ण विवेक काहु बोलना पहुंच प्राण अगम गोचर प्रभ निर्वाणे निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत के न पाई अनक भगत बंधन नित करे चरण कमल हृदय सिमरै सदबलिहारी सतगुरु अपने नान जित प्रसाय सप्रभ जपने हे हर पावे जन कोई अमृत पीवे अमृत सुहोए उस पुरख का नाहीं कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुणतास आठ पहर हर का नाम ले सतपति शिव को दे मोह माया का संग न लेप मन में रख हर हर एक अंधकार दीप प्रगासे नान भरम मोह दुख ताह तिनासे तब तमाय ठाण बरताई अनंत पै दुख ना ठे पाई जन मन के मिटिया देसे साधु के पूर्ण उपदेशे पौ चुका निरपु हुए बसे सगल व्याध मन तिख नसे जिसका साथ कृपा तारी सासन जपना मुरारी चित पाई चुके प्रभु गवन सो नानक हर हर जस सरवन निर्गुण आप सरगन पियो ही कला तर जिन सगली मोहे अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा ना ही कोई सर्व निरंतर एको सोए बोध बोध रवे रूप रंग पय प्रगा साध के संग रच रचना अपनी कलतारी अनक बार नानक बलिहारी श्लोक साथ न चाले बिन पदन बिखिया सगली छारे हर हर नाम कमावना नानक तन सारस्पदि संत जना मिल करो बिचारे एक सिमर नाम आधारे अवर पाव सभी बिसारो चरण कमल रिद मह उतारो करण कार सो प्रभ सम्राट दृढ़

0: सच्चे सब तान सच्चे सब जो सच्ची तेरी सिफत सच्ची साला सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो कच ने कच महला पहला
1: वड्डी वडेजा वड्डा नाओ वड्डी वडेजा सच न्याओ।

सच ता पर जानिए जा हृदय सच्चा होए कुड़की मल उतरे तन करे हच्छा तोए सच ता पर जानिए जा सच तरे प्यार नाओ सुन मन रहसिए ता पाए मोख द्वार सच ता पर जानिए जा जुगत जाने जियो तरत काया साधके विच दे करता बियो सच ता पर जानिए जा सिख सच्ची ले दया जाने जी की किछ पुन दान करे सच ता पर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास सतगुरु नु पुछ के बहरह करे निवास सच सबना होए दारू पाप कड्डे तोए नानक वखाणे बेनती जिन सच पल्ले।

परिधान महंगा तलिखा के मेरा तमस्तक लाइए कूड़ा लाल छटके हो एक मरला कते आइए फलते वे हो पाइए जे वे ही कर कमाइए जे हो वह पूर्व लिखिया था तूरत ना दी पाइए मत थोड़ी सेव गवाइए मत थोड़ी सेव गवाइए।

लब पाप दोई राजा मेहता कूढ़ुआ सिकदार, काम ने सद पुछिए बह बह करे बिचार, अंधी रयत ज्ञान भी होनी पाए परे मुरदार, ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे शिंगार, ऊचे को कहवा दा गावे जोदा का विचार, मूर्ख पंडित हिकमत हुजत संजय करे प्यार, धर्मी धर्म कर है गावा वह मंगे है मोख द्वार, जति सदा वे जुगत न जाने छट बहे कर बार, सबको पूरा आपे हो वह कट न कोई आखे, पत परवाना।

शब्दं ब्राह्मणं क्षत्रिय शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृतं सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पे ओ नानक ताका दास है सोई निरंजन देव।

श्याम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छे सच रहे सबको सच समावे। ऋग कह रहा भरपूर राम नाम देवा मैं सूर नाय लै प्रच जाहे नानक तो मुखंतर पाहे। जुज मैं जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया पार जात गोपी लै आया बिंद्रावन में रंग किया। कल मैं वेद अथर्वण हुआ नाव खुदाई लो भया नील बस्त ने कपड़े पहरे।

0: जर देख सुधी जय महला पिला।
1: पढ़ पुस्तक संध्या बादंग सिल पूज बगल समादंग मुख चूठ भी पुखन सारंग त्रैपाल तिहाल बिचारंग गल माला तिलक लेला टंग दो तोती बस्तर कपाटंग जे जानस ब्रह्मंग करमंग सब फोकट निश्चौ करमंग कहो नानक नेचो त्यावे बिन सतगुर वाट न पावे।

साई भय दयाल कृपा करे ता साई कर कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुकुम नाए सी हुकुम नावे प्रमाणता कसमे का महल पाए सी कसमे पावे सो करे बनो चिंदिया सो फल पाए सी ता दरगे पैंदा जाए।

माया मोह परम पै फूले, माया मोह परम पै फूले, सुत दारा सो प्रीत लगाए, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गोर रामदास राखो शरणाई।

डोलन ते राखो हो प्रभु नानक दे कर हाथ सजन सच्चा पातशाह सिर साहां दे साहो जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसाओ सजन सच्चा पातशाह सिर साहां दे साहो जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसाओ।

साहिब जी ने जो अपनी रसना तो बचन कहे, सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी का आगमन होया, उस संबंधी भी आपां विचार करांगे। आओ, कल भी बेनती की सी कि कथा विच सब तो पहल इस चीज़ दी है कि जो शब्द हुक्म रूप विच सतगुरां ने बख्शिश कीता है उहदे अखरी अर्थां वल आपां जरूर ध्यान दिया करिए, क्योंकि अक्सर आपां कोई दुनियावी गल जां कोई कहानी उस वल साडी सुरत बहुत छेती आकर्षित हुंदी, खिच पांदी है। पर संगत जी, जिस हुक्म नूं आपां रोज़ाना हाथ जोड़ के अमृत वेले करोड़ां दी गिनती विच सिख हरिमंदर साहिब तो यह हुक्म सुनदे ने, ते इस दा भाव यह है जो सतगुरां ने बचन दिता है उस शब्द नूं, उस हुक्म नूं, उस मुख वाक नूं आपां विचारन दा यतन जरूर करिए। आप जितने सतगुरु जी दी चरण शरण विच सुभाए मान को इस वक्त देशां विदेशां विच घरां विच बैठे आप जी गुरु रामदास जी दे दर घर तों कथा कीर्तन सरवण कर रहे हो, सुरत करके हाजरी लवाओ, असीस बख्शो संगत जी, क्योंकि विच संगत हर प्रभ वसै जियो। धन गुरु रामदास महाराज, आप मेहर करो, तरस करो, सुरत दी एकाग्रता, मन दा टिका, भय भावनी, शरदा, अकीदत आप बख्श के विचार करा लवो। अदब सहित संगत जी उचारण करो, सतनाम श्री वाहे गुरु जी। फिर उचारण करो जी, सतनाम श्री वाहे गुरु जी।

राग बिलावल है और इस राग दे अंदर सतगुरु गुरु नानक देव सच्चे पातशाह आदि सतगुरु जगत गुरु बाबा सतगुरु उन्होंने अपनी रसना तो ये अष्टपदी रूप च शब्द उचारण किया है क्योंकि धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज आप शब्द वरते हैं आदि गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच जिथे भट्ट साहबान जी ने सतगुरां की सिफत की जिथे गुरु घर के रबाबियां ने सिफत की उथे गुरु जोत ने धन गुरु नानक साहब महाराज जी की सिफत विच अनेक बचन उचारण किए। दास जदों रामकली की वार का पाठ करता है तो पहला बचन ही गुरु के रबाबियां का यह है कि नाउ करता कादर करे क्यों बोल होवै जो खीमद नाउ करता कादर करे करता का अर्थ सब कुछ बनाउन वाला कादर का अर्थ भी परमात्मा कुदरत का रचैता इहदा भाव सियाने पुरश कढ दिया कि जिस गुरु नानक साहब के नामने नू वड्याई नू करते पुरख वाहगुरु जी ने उच्चियां कर दिता ते साड़ी रसना साड़ी जबान केड़े शब्द घड़ के गुरु नानक साहब की सिफत कर सकती है। उन्होंने बोलों नाल जोखिया नहीं जा सकता तोलिया नहीं जा सकता। फिर बेनती सीधे अर्थ ये ने कि जिस की वड्याई जिस का नामना जिस का नाम करते पुरख वाहगुरु कादर ने वड्डा कर दिता साढ़े बोल थोड़े पै जाते साड़ी शब्दावली मुक जाती है गुरु नानक साहब की सिफत बाकी फिर रह जाती है। गुरु के रबाबियां दे बचन ने भाई सत्ता जी भाई बलवंड जी नाउ करता कादर करे क्यों बोल होवै जो खीमदे जो खीमदे दे गुणा सत भैन पाराव है पारंगत दान पड़ीमदे नानक।

0: गुरु एडी वड्डी बख्शिश, कहने कर्म भी नहीं, ज्ञान भी नहीं, ध्यान भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस इन्ना क है साडे मुरशद दा नाम, साडे राहबर दा नाम, साडे पैगंबर दा नाम। धन गुरु नानक देव कह वड्डा पुरख है, वड्डी कमाई वाला है, उहदा नाम लिया साडे परदे ढक देंदा है। तुसीं रोज बचन पढ़ते सुनते हो, ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना, ये अरदास है सतगुरु गुरु अर्जन साहब, किड्डा माण है गुरु नानक साहब जी ते। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना, तेरी कदर भी नहीं जानी, पर एक गल पक्की है, सब ते वड्डा सतगुरु नानक, वड्डा पुरख वड्डी वडियाई ते सब ते वड्डा। महाराज जी बचन कर रहा, ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना, तेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी, जिन्ना साड़ी रख रही है। फिर बेनती करा, सब ते वड्डे वड्डे पुरख ते वड्डियां कमाइयां वाले मेरे आदि गुरु नानक साहब ने अज दा शब्द उचारण किया है, जिहड़ा सतगुरां ने सानू हुक्म रूप दिता है।
1: मन का कहिया मनसा करै,
0: इत्थे सतगुरु जी आरंभ विच कह रहे ने, बख्शिश कर रहे ने, मन का कहिया मनसा करै, इहदे अखरी अर्थ थोड़े जे पहला आपां करांगे, फिर इस पदे दी विचार करनी बहुत लाजमी है। अखरी अर्थ इह ने मन का, इहदा अर्थ मन दा, कहिया अर्थ बोलिया होया, मन का कहिया इहदा भाव जो मन कह रहा है, मन दे बोल, मनसा करै। हुण जिहड़ा मनसा शब्द है ना जी, इहदे वैसे अर्थ काफ़ी मिलदे आ सानू इस शब्द दे। एक मनसा दा अर्थ यह आस भी हुंदा है, एक मनसा दा अर्थ भाई काम सिंह उन्हां ने मनुख भी किया, मनुष्य भी, पर इत्थे ज़्यादातर विद्वानों ने जिहड़ा मनसा दा अर्थ किया है, एक है बुद्धि, याद रखो इच्छा नहीं, हालांकि आसा नाल शब्द मनसा आउंदा है। मैं भी अज सतगुरां दा जो हुक्म सुनिया ते मन च आया आसा मनसा, असीं पढ़ने आसा मनसा सगल त्यागै जगते रह निराशा, उहदा अर्थ है मन दे इच्छावां, आसा मनसा जिहनूं आपां कहिंदे। पर इत्थे मनसा दा अर्थ कीता है बुद्धि, क्यों? थोड़ा जिहा इस बरीकी नूं, मन का कहिया मनसा करै, जो मन फुरने बणांदा है उह कुछ बुद्धि अगे करी जा रही है। असिर पहला अखरी अर्थ ने जी, मन का कहिया मनसा करै, जो मन कह रहा है ओ कुछ मत, ओ कुछ बुद्धि कर दी है।
1: एहो मन पुन पाप उचरै,
0: एहो मन, यह मन जिहड़ा है यह सिर्फ पुराने शास्त्रां दी विचार करी जा रहा है, ये कम कीता ते पुन है, ये कर्म कीता ते पाप है, इस कोई शक नहीं कि पाप ते पुन दोनों हैं। सतगुरां ने बाणी विच दोनों नूं कहा, गुण भी है औगुण भी है, चंगियाई भी है बुरियाई भी है, ते पुन पाप साडे नाल निभदे भी ने। पुन्नी पापी आखण नाहे, कर कर करना लिख लै जाओ। पर इत्थे भाव है कि मन जो कह रहा वह बुद्धि मनी जा रही है, मत मन दी पई है, ते मन की करदा शास्त्रां अनुसार दसे हुए पुन कर्म पाप कर्म ओदी ही विचार कर रहा है।
1: माया मद माते त्रिपत ना आवै,
0: कि जेड़ा मन माया दे नशे विच मस्त है, जिस मन नू सिर्फ माया दा हंकार चढ़ गया, याद रखियो ओ मन कदी भी रजदा नहीं, ओ नशेड़ी मन कदी भी तृप्त नहीं हुंदा।
1: त्रिपत मुक्त मन साचा भावै,
0: त्रिपत मुक्त मन साचा भावै, हजूर कहिंदे ओ ही मन त्रिपत हुंदा है, ओ ही मन बंधना तो मुक्त हुंदा है। साचा दा अर्थ है वाहिगुरु परमात्मा, भावै दा अर्थ है प्यारा लग जाना। फिर बेनती सुनियो संगत जी, ये चार तुकां आपां दे अर्थ कीते आ, मन दी कई कोई गल बुद्धि मन दी पई है, ये मन पाप ते पुन दी विचार कर रहा है, ये मन माया दे नशे विच अन्ना होया पे है, ते उस नशे विच इहदी तृप्ति कोई नहीं खोरी, ये रज नहीं रहा, ते मन तां तृप्त होवेगा तां मुक्त होवेगा जदों इस मन नूं सच्चा वाहिगुरु चंगा लगन लग पएगा। थोड़े जे आपां इहदे ਇਹ

कथा जरूर कर लीए जी, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च सारी साधना साढ़े मन की दसी है। आप रोज कथा सुन देखो, मैं गल ना रिपीट करा, रोज मन की गल चलती है, पर फिर भी थोड़े जे सरल अर्थ आप देख लीए, मन है की है, मन किसनू कहिंदे ने। जिहड़े पुराने दार्शनिक लोग सन वह आम तौर पर 11 इंद्रियां का जिक्र करते हैं, आप वैसे 10 कहने, एक होर कहा जाता सी जिन्हों अंतःकरण कहने, 5 कर्म इंद्रे 5 ज्ञान इंद्रे, यह 10 हो गए। एक इंद्री जिहड़ी वह मन मानते सन, इनू 11वीं इंद्री मानते हैं। इस पूरे अंतःकरण नू भी वैसे अंतशाकरण जिन्हों कहने, अंतःकरण जिन्हों कहने, विधान की बोली विच चुतिष्टे शब्द वरत्या जाता है, वह साढ़े अंतःकरण का अर्थ ही है कि जिहड़ी साढ़े अंदर की इंद्री है। हुण अंदर की है, जिहड़ा मन है, बुद्ध है, तीसरा चित है, तो चौथा अहंकार है। संगत जी थोड़ा जिहा ध्यान नाल बेनती सुनियो, क्योंकि जो सतगुरां ने कहा है आपां उस दी व्याख्या कर रहे हैं, तो जिन्नी कु बुद्धि दाते ने दिती, क्योंकि यह नहीं कि बाबा जी दे बचना दी व्याख्या असी मुकम्मल कर जावांगे। असी अखर लभ के, शब्द लभ के, वाक लभ के उस शब्द दे अर्थ करी जांगे, पर जिस अवस्था विच, जिस उच्ची उड़ारी विच, जिथे आत्म परमात्म दी अभेदता मिलाप विच सतगुरां ने बचन उच्चारण किया, उत्थे गुरु की गत गुरु ही जाने। पर अर्ज है हुण सिर्फ कि बुद्धि की है, साढ़े अंदर जिन्हों आप अंतःकरण कहने, अंदर दी इंद्री, इहदे लई 4 शब्द वरते जांदे आ, मन, बुद्ध, चित ते हंकार। उंज वैसे सरम खंड विच सतगुरां ने इन्हां चारां दी वरतों, चारे शब्द वरते आ। सरम खंड विच अंतःकरण घड़िया जांदा है, उत्थे मन भी घट जांदा है, बुद्धि भी घट जांदी है, चित भी काबू हुंदा है, तो उत्थे खौम ही मरदी है। असी पाठ करने हैं सरम खंड की बाणी रूप, तिथ है घाड़त घड़ियाँ बहुत अनूप, ताकियाँ गल्लां कथियाँ ना जाएं, जे को कहे पिछे पछताए, तिथ है घड़िया सुरत मत मन ते बुद्ध, क्योंकि अर्थ कर ली सौखे शब्द बन जाएंगे। तिथा घड़िया सुरत मत मन बुद्ध, श्रीमान भाई कान सिंह नाभा जी ने जदों इन्हां तुकां दा जिक्र किया अंतःकरण विच, उन्होंने कहा गुरमत ने यह 4 शब्द वरते। मैं बेनती की, उंज वेदांत कहिंदा मन बुद्ध चित ते अहंकार, पर भाई साहब लिखदे आ कि जिहड़ी सुरत है, देखो सुरत मत मन बुद्ध, जिहड़ी सुरत है इहनू चेते च अर्थ करदे आ, वाहिगुरु सुरत दे मत च अर्थ करदे आ, मत दे ममतव च अर्थ करदे आ, बुद्धि दे अखर वरते करदे आ, ते अगे अहंकार है, तिथा घड़िया सुरत मत मन बुद्ध, वह इस नूं अंतःकरण गुरमत अनुसार कह रहे हैं। पर मैं सिर्फ बेनती करांगा, मन की है, मन की है, यह साढ़े तुहाडे शरीर च, इहदा संबंध मानवी शरीर नाल, धर्म नाल नहीं, कि सिख विच हुंदा, हिंदू च नहीं हुंदा, मुसलमान च हुंदा, अंग्रेज च नहीं हुंदा। ह्यूमन बीइंग जिन्हों रब ने पंजां तत्तां दा चोला दिता है ना, सच एवे भारत दा दर्शन कहिंदा है कि उस बंदे दे अंदर यह चुतिष्टा है, यह अंतःकरण है, इस विच मन की है। चलो माइंड शब्द वरतने, मन साडे शरीर दे अंदर ओ अदिश जिहड़ी नज़र नहीं आउंदी, अदृश्य ताकत है जिहड़ी पूरे इंद्रियां नूं कंट्रोल करी बैठी है। फिर मेरी बेनती सुनो, इहनूं कई सज्जन ब्रेन नाल अर्थ देंदे आ कि नर्व सिस्टम जिहड़ा है जिवें ब्रेन काबू करदा, नहीं, जिन्नी कोई समझ पई, मन वह शक्ति है जिहड़ी साडे पूरे हर एक इंद्रे विच वरदी है, इत्थों तक कि मन पैर दे अंगूठे तो लै के सिर दी चोटी तक पूरे दे पूरे जिसम विच वरतदा, पर दिसदा नहीं, अदृष्ट है। होर थोड़ी जी बेनती, मन असल च संकल्प, विकल्प, संवेदना, इच्छावां, आसा मनसा यह पैदा करदा, इहनूं होर सौखा समझिए। स्याणे लोग कहिंदे ने जिवें असी शब्द वरतने आ खमाले, खिम दा अर्थ है बर्फ, आलिया दा अर्थ है घर, हिमालय दा अर्थ हो गया बर्फ दा घर, वह घर उस तरह पहाड़ है उच्चा,

कथा सुनी है बहुत टिका बनया हो संगत विच बैठिया मन की दुनिया होर है बाहर निकले घर दे खलजगना भी चला जाता है इको दम मन जिहड़ा अपना रूप बदल जाता है। महाराज कहिंदे ये शक्ति भी है माया भी है सीओ दा अर्थ परमात्मा एक कल्याण स्वरूप प्रभु भी है। ए मन शक्ति ए मन सीओ ए मन पंच तत् को जियो जदों ये पंजां तत्तां दे मन इंद्रियां विच खचत हुंदा है उदों उहदा रूप हो जाता है। ए मन पंच तत् को जियो ए मन लै जो उन मन रहे जिहड़ा इस मन नूं चुक के उन मनी अवस्था विच चला जाए ते महाराज कहिंदे तो तीन लोकी बातें कहे यही मन जिन्हों आने वाले भविख का कोई पता नहीं जो कि शब्द न जुड़ जाए ये तिना कालों का ज्ञाता हो जाता है। संगत जी इत्थे महाराज जी ने ना सब तो पहली गल मैं एक बेनती करांगा जिथे आप नाम मंगने हाँ सिमरन मंगने हाँ वेखो ते अरदास क्या सिख द मत नीवी रहे ये मत उच्ची रहे मन नीवा रहे पर प्यारे जिहड़ी मत मन पिछे लगन लग पे ना वह बंदे लई भला नहीं कर सकती। कबीर साहब का एक बचन है कहो कबीर प्रगट पई खेड लेले को चूंगा नित भेड़। कबीर साहब का वचन है कहिंदे वेखो कैसी आश्चर्य खेड हो गई लेले को चूंगा नित भेड़। लेला का अर्थ है मन ते भेड़ का अर्थ है मत। फिर अर सुनियो हुण भेड़ अगे तुरे ते लेला उहदे पिछे जाए पर इत्थे प्रगट उल्टी खेड हो गई इत्थे मन अगे तुरिया फिरदा नकम्मी मत उहदे पिछे तुरी फिरदी। इत्थे गुरु नानक साहब जी दे जिहड़े अज बचन ने कि मन जो कह रहा है उहनू मत मन दी पी साडी मत ते बुद्धि जिहनूं कहिंदे आ इह उमर दे नाल नाल चेंज हुंदी है जी। याद रखियो बाणी च इक बालक बुद्ध भी आउंदा है धन्ने सेव्या बाल बुद्ध बालक वाली बुद्धि भी निर्मल हुंदी है। कई बार असीं देखने आ बाणी च अंग बुद्ध भी आउंदा है जिवें पाठ करने आ पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो नवल भुअंगम साधे पंच जना सो संग न छुटक्यो अदक अंग बुद्ध बंद अंग बुद्धि। एक बचन आउंदा है हम बड कब कुलीन हम पंडित हम जोगी सन्यासी ज्ञानी गुनी सूरख हम दाते ए बुद्ध कब न नासी अंग बुद्धि है जी। चंचल मत बारक बपरे की सर्प अगन कर मेले मत दे कई पड़ा ने पर एक मत ऐसी है गुरमुखो जदो गुरु बख्शिश करदा है उस मत नू सतगुरां ने विवेक बुद्धि किया है। असी एक जिहड़ा पाठ कीता अंग अंग बुद्धि पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो नवल भुअंगम साधे पंच जना सो संग न छुटक्यो अदक अंग बुद्ध बांधे प्यारे इन विध मिल न जाई मैं किए कर्म अनेका हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। मेरी फिर बेनती है बाणी विच मत वास्ते भी बेनतियां कीतियां ने गुरमुखो फिर मर्ज करांगा जिस बंदे दी मत मारी जाए मत बुद्धि प्रिष्ट हो जाए उहदा मन कदी निर्मल रह नहीं सकदा। इसे करके सतगुरां ने बाणी विच कहा कि सामत देहो दयाल प्रभ जित तुमै आराधा मैनू ओ मत दे दिओ महाराज जिद नाल तुहाडी बंदगी करां। इत्थे सतगुरु कह रहे ने यह जिहड़ा मन है ये जो कहिंदा है मत उहनू मन्नन लग पई है क्योंकि मन ने मत नू गुरु वाले पासे जान ही नहीं दिता। तो फिर मैं अर्ज की एक किन्ना काम करदा है जी इक्को वेले पूरे शरीर उत्ते काम करी जा रहा है। भाई गुरदास साहब कहिंदे ने यह अखां च वेखदा है स्वाद मन लैंदा है यह कन्नां च सुणदा है रस मन लैंदा है यह जीव तो बोलदा है स्वाद मन लैंदा है जीव ते रस चखदा है पर स्वाद मन लैंदा है। सच ए वे सारियां इंद्रियां जदों माड़े रस्ते ते तुरदियां ना हर एक दे कुराए पए होए दा बेरस जिहदा रस कोई नहीं रस जाण के मन चखी जा रहा है। भाई साहब दे बचन ने अखी अंदर वेखदा कर चोज विड़ाणा सब चोज विड़ाणा कन्नी सुणदा सुरत कर आखाण विखाणा जेवा अंदर बोलदा वो साध लुभाणा हत्थी किरत कमावदा पग चलै सुजाणा देही अंदर एक मन इंद्री परवाणा। एक मन नू पूरियां इंद्रियां ने मान लिया जी क्योंकि मन राजा सुल्तान। गुरु रामदास जी का पुरब आपां मना रहे हाँ सतगुरां कोल आ बेनती की जी जिहड़ा अज हुक्मनामा आया है ना सिख आए धन गुरु रामदास जी दे चरण

0: ना, मंत्री हो चाहे संतरी हो। भाजपा का मतलब ये थोड़ी है कि आप पहले वही भाजपा ईडी के जो है वो छापे डालती है, 10 दिन बाद उसी बंदे को वाइस सिक्योरिटी दे रही है, इसका मतलब क्या हुआ? ईडी का मतलब डराने के लिए, सीबीआई का मतलब डराने के लिए। तो ऐसी जो बातें हैं जो देश में जबरदस्ती लोकतंत्र थोपा जा रहा है, डंडा तंत्र कह सकते हो आप, डराऊ तंत्र, डराने वाला तंत्र, तो उसके उस सिलसिले में आज मैं माननीय राष्ट्रपति जी से बात करूंगा और उनको सब सारी चीजों से अवगत कराऊंगा कि आपके पास, आप संविधान के संरक्षक हैं, आप अपने राइट्स को इस्तेमाल करें।
1: ये पूरे आम आदमी पार्टी के 95 जो एमएलए हैं वो महामहिम मैडम द्रौपदी मुर्मू जी को हम मिलने जा रहे हैं। हम संविधान की जो पावर्स उनको दी गई हैं उनको एक्सरसाइज करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे कि रिकॉल का जो कंसेप्ट उसको यहां पे एक्सरसाइज किया जाए। देश की दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज में रिकॉल का कंसेप्ट है, तो उसको हम यूज करने के लिए राष्ट्रपति साहब से रिक्वेस्ट करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो देश के लोकतंत्र को तोड़ने का प्रयास है, जो हमारे देश की डेमोक्रेसी के ऊपर हमला भारतीय जनता पार्टी ने बोला है, उसको मैं समझता हूँ अकेला पंजाब ही रोक सकता है और इस लोकतंत्र को बहाल करवाने के लिए पंजाब लड़ाई लड़ेगा। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी इस देश के लोकतंत्र सेटअप को तोड़ के डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रही है। जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया था, उस संविधान को खत्म करने का यत्न प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो उसको मैं समझता हूँ करारा जवाब जो है वो पंजाब से ही मिलेगा। देखिए, इससे पता चलता है कि हमारे ऑनरेबल महामहिम जी ने जो लोगों के नुमाइंदे हैं, सीधे चुने हुए नुमाइंदे हैं, तो उनको टाइम लेट दिया और जो हमने चुन के भेजे थे, जो आज इनको डिफेक्शन करवा दी और जिनको
2: मैं समझता हूँ जिनकी पार्टी के पंजाब में 2 MLA हैं जो इन एलिजिबल हैं टू फाइल द नॉमिनेशन पेपर फॉर द राज्यसभा, जो एलिजिबल भी नहीं है, वो वोट मतलब अपनी वोट का एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते थे, जो नॉमिनेशन पेपर भी फाइल नहीं कर सकते थे, आज उनके 6 राज्यसभा मेंबर है। तो इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान में विश्वास नहीं रखती। वो देश
3: अज भारत के माणयोग राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने मैं मिलके आया, मीटिंग करके आया। जो पिछले दिनी संविधान की हत्या, लोकतंत्र की हत्या हुई है कि अचानक 7 MP जिहड़े ने वो कट्ठे हो के अपने आप ही ये कह देंदे ने कि असी हुण आ पार्टी बन गए, असी आ पार्टी नहीं रहे, हुण असी आ पार्टी बन गए, होर पार्टी बन गए, मर्ज हो गए असी, जो कि बिल्कुल गैर संविधानिक है। राष्ट्रपति जी ने मैं डिटेल च गल की है कि जां तां फिर पूरी पार्टी जिहड़ी है वो 2/3 मजोरिटी नाल रेजोल्यूशन पास करके मर्ज होवे किसी होर पोलिटिकल पार्टी च, तां तां हैगा, नहीं तां फिर कल्ला एक राज्यसभा दे एक हाउस दे, जाने कि पार्लीमेंट दे एक हाउस दे 6-7 जाने कह देण कि असी हुण आ पार्टी नहीं हैगे, आ पार्टियां, ये मनमर्जी थोड़ी चलदी हुंदी है, ये मजाक है तां लोकतंत्र दा। मैं राष्ट्रपति जी ने यह भी कहा कि हुण जे पंजाब दे विच गिणती करनी होवे तां भारतीय जनता पार्टी दे BJP दे MLA 2 ने, राज्यसभा दे MP 6 ने, ये किवें हो सकदा जी? ये मजाक नहीं हो गया फिर? ये संविधान का मजाक नहीं उड़ रहा? मैं राष्ट्रपति जी नूं कहा कि जी जां तां फिर मैं लिखती भी दे के आया, आही उहदी कापी मेरे कोल, इहदे ते साइन भी ने सारे MLA दे, सारे जिन्ने 95 MLA। जां तां फिर अस्तीफा दे के जांदे, जे इन्नी इनकलाब है उन्होंने दिल के अस्तीफा दे देंगे स छे दिन छे अपन सीटा तो आम आदमी पार्टी किसी होर बंद भेज दें उ जिहड़ी पार्टी नाल इन्हां दा हुण दिल मिलिया जिहड़ी पहलां कहिंदे सी गुंडियां दी पार्टी है इह तां गुंडागर्दी करदे आ पैसे वाले है जां डराउण वालिआं दी पार्टी है उह पार्टी अजकल वाशिंग मशीन नाल धोते गए जां तां फिर इस्तीफा दे के जांदे ते उहनां दी पार्टी वल्लों जिथों मर्जी चुण के दुबारा आ जांदे असीं अपने जिहड़े सत्त रिप्रजेंटेटिव ने उह होर चुण लैंदे इह मैं राष्ट्रपति जी नाल गल कीती अज्ज जां फिर संविधान दे विच रीकॉल दी प्रोविजन लियांदी जावे बहुत बारी अमेंडमेंट हुई है संविधान दे विच एक होर सोध कर लो और रीकॉल दा मुद्दा भी राघव जड्डी उठा रहा सी राज्यसभा च कि जे लोगों की उम्मीदों से पूरा ना उतरे तो उन्हें वापस बुला लो तो तुसी लोगों की उम्मीदों से पूरे उतरे हो जी आ खड़े ने MLA सारे इन्हां नूं लोगों ने चुनिया लोगों ने इन्हां नूं चुनिया इन्हां ने अगे राज्यसभा दे चुने तो फिर पंजाब दे लोगों का तो मैंडेटी हो गया ना इन्हां कोले कि चुने हुए नुमाइंदे ने अगे चुने ने तो अज वो अपने आप नूं इनकलाबी दस के तो होर पार्टी चले गए ये लोकतंत्र की हत्या पंजाब दे नाल घट्टो घट पंजाबी जिहड़े ने इहो जी गदारी नहीं चलते इहो जी गदारी पंजाबी नहीं चलते ते नाल मैं राष्ट्रपति जी नूं ये भी कहा कि जे उन्होंने कोई गलत काम किया हो BJP च जाण दा मतलब ये थोड़ी है कि कानून तो उपर हो गए हो जे BJP चले गए तो यह मतलब ये थोड़ी है कि उन्होंने कोई FIR ही नहीं हो सकती या उन्होंने कोई मुकदमा नहीं चल सकता उन्होंने कोई सुरक्षा कवच मिल गया मैं राष्ट्रपति जी ने कहा कि जिहड़ी केंद्र सरकार है जिहड़ी पार्टी की BJP की वो किसी होर स्टेट के दागियां नूं बागियां नूं अपनी पार्टी च लैके उस तो बाद उन्हां दे मुकदमे खत्म कर देंदी है उन्हां दे सारे केस माफ कर देंदी है जां उन्हां नूं सुरक्षा दे देंदी है भी इन्हां ते कोई परचा नहीं होगा पंजाब दे विच नहीं चलना पंजाब च तां फ्यूचर दे विच भी भविख दे विच भी जे कोई गलत काम हो दी रिपोर्ट आऊगी जां मिसयूज़ अपनी पावर दा किते भी कीता जाऊगा उन्हां वल्लों तां परचा होगा पंजाब च तां पंजाब दे विच उन्हां दी कोई इदां दी सेफ्टी नहीं हैगी कि असी BJP च आ गए हुण साडे ते मुकदमा नहीं चल सकता इह कोई उन्हां नूं कोई छतरी नहीं मिल गई इस गल दी कि असी हुण इहदे ओले लुक जाएंगे BJP दे ओले BJP दे ओले नहीं लुक सकते होर देश दे होर स्टेट तुसीं लुक सकदे हो पंजाब च नहीं लुक सकते ये मैं उन्हां नूं स्पष्ट करना चाहुंदा मैं सुणिया कि उह कहिंदे इहनां कोले इक राज दी पुलिस है साडे कोल BJP कोले 21 राज्यां दी पुलिस धमकी दिंदे आ मतलब 21 परचे करा दोगे साढ़े धमकी दें सानू तुसी पंजाबी इदा बर्दाश्त नहीं करते प्यार ना चाहे जान ले लो पर जे कि आकड़ की जा बाह मरोड़न की कोशिश की तो पंजाबी ट्रिपल 4 गुणा 5 गुणा बद जड़ा फोर्स नाल वापसी करते फिर सो मैं अज राष्ट्रपति जी ने दस के आया लंबी चौड़ी लैटर है सारे दे साइन ने कि इलैक्टड ते सिलैक्टड च फर्क हुंदा है ये सिलैक्टड सी पर इलैक्टड द्वारा सिलैक्टड सी इस करके इन्हां नूं इन्हां दी जिहड़ी मानता रद्द कीती जावे असीं कोर्ट दे विच वी गए होए आं मैं राष्ट्रपति ने भी दस्सिया उह कहिंदे कि मैं संविधान दे स्पैशलिस्टां नाल गल करदी आं मैं जरूर इस गल दा कोई ना कोई तुहानूं रिस्पोंस देऊंगी मैं संविधान दे विच की लिखिआ होइआ संविधान ही सानूं साढ़े देश नूं चलाउंदा है मैं कहा जी संविधान नूं तां बदल लगे हुए ने संविधान नूं तां टिच नहीं समझदे हो कदे ED वरतली कदे कदे CBI वरतली कदे इनकम टैक्स दा छापा पै गया ये डराउंदे आ ये डरा के उस तों बाद फिर सारा कुछ ठीक हो जांदा है तुसीं ऐसे केस दे विच ही एग्जाम्पल लै लो 10 दिन पहलां अशोक मित्तल जी दे ED दा छापा पैंदा 10 दिन पहलां ही उहनां दे गुड़गांव स्थित बिजनेस ते लवली यूनिवर्सिटी ते जां जिन्ने भी उन्हां दे बिजनेस दे टिकाणे ने उन्हां ते ED दा छापा पैंदा छापा 2 दिन चलदा ते 10 दिनां बाद उस बंदे नूं 22 कैटेगरी दी सिक्योरिटी दे दित्ती जांदी है लो इह कोहड़ी वाशिंग मशीन च धोलिया बई तुसीं ED दे केसां दा की बणिया मतलब डरा के

0: ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਅੜਚਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਚੋਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਚੋਰ ਦੀ ਦਾੜੀ 'ਚ ਤਿਨਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੀ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਊਗੀ, ਪਰ ਆਊਗੀ ਲੀਗਲ ਤੌਰ 'ਤੇ।
1: को छोड़ भारतीय जनता पार्टी में विलय करने के बाद एक प्रतिशोध और बदले की आग में जल रही पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से वेंडेटा पॉलिटिक्स और बदले की भावना से प्रेरित होकर पंजाब की स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल करके तमाम वे सांसद जिन्होंने संविधान के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए आम आदमी पार्टी से अपनी असहमति दर्ज कराते हुए उसे त्यागा, इस सारी वारदातों को, कथन को हमने आज ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के समक्ष रखा और सीधे तौर पर यह बात कही। और मैं आम आदमी पार्टी को भी ये बात कहना चाहता हूं कि जब तक थे आज्ञाकारी तभी तक थे संस्कारी, साथ छोड़ते ही बता दिया हमें भ्रष्टाचारी, जो लूट खसूट को कहते हैं कट्टर ईमानदारी। आप ही बताइए आखिर उनसे कैसे कोई निभाए यारी। आम आदमी पार्टी जो पानी पी पी कर सुबह से शाम तक पूरी दुनिया पर बदले की राजनीति का आरोप लगाती आती है, वे आम आदमी पार्टी आज अपनी नाव को डूबता देख वे सांसद जिन्होंने अपना रिश्ता नाता तोड़ लिया आम आदमी पार्टी से, उनके खिलाफ एक बहुत ही डेंजरस वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है। हमने 24 अप्रैल 2026 को आम आदमी पार्टी को त्यागा, भारतीय जनता पार्टी में विलय करी और उसके बाद से लगातार हमारे तमाम सांसदों का उत्पीड़न शुरू कर दिया गया। सबसे पहले वर्ल्ड कप विनर हरभजन सिंह साहब को उनके घर के बाहर देशद्रोही लिखा आम आदमी पार्टी के लोगों ने, पंजाब पुलिस की मदद से उनके घर पे पथराव किए और उनकी माताजी और सिस्टर्स के बारे में न जाने क्या क्या बातें उनके जलंधर में स्थित निवास पे जाकर नारेबाजियां करी। उसके बाद हमारे साथी राजेंद्र गुप्ता जी जो पद्मश्री हैं और एक बहुत बड़ी फैक्ट्री पंजाब के मालवा इलाके में चलाते हैं, जिन फैक्ट्री की वजह से करीब 30,000 लोगों के घर का चूल्हा चलता है, उस फैक्ट्री को बंद करने के लिए पानी का कनेक्शन काट दिया पंजाब सरकार ने। पॉल्यूशन बोर्ड जो पंजाब सरकार का विभाग है उसने जाकर रेड करी और वहां पर फैक्ट्री किस प्रकार से बंद करी जाए वो कार्रवाई शुरू कर दी। और हद तो तब हो गई जब हमारे साथी सांसद संदीप पाठक जी, जो IIT के प्रोफेसर थे, जिनकी तारीफें करते आम आदमी पार्टी थकती नहीं थी, उनके खिलाफ 2 मिलिशियस और फैब्रिकेटेड FIR दर्ज कर दी और यह मीडिया के माध्यम से फैला दिया गया कि अब इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। मैं सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप ये विजिलेंस, ये पॉल्यूशन बोर्ड, ये पंजाब पुलिस का सहारा लेकर जो बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं, एक डेंजरस खेल है जिसकी शुरुआत तो आपने कर दी है लेकिन इसका अंत बहुत खराब होने जा रहा है। इन चीजों से बचिए, इन चीजों को बंद करिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक हम आपके साथ थे, हम तमाम लोग बहुत अच्छे थे, बड़े संस्कारी थे, आज्ञाकारी थे, और जैसे ही आपका साथ हमने छोड़ा हम सब लोग गलत हो गए, हम सब लोग भ्रष्टाचारी हो गए। सूत्रों के मुताबिक यह बताया जा रहा है कि अगला टारगेट मैं होऊंगा, अब ये मेरे पर भी कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं। मैं पहले ही आप लोगों को सूचित कर देता हूं कि कोई मनगढ़ंत मुकदमा ये लोग अवश्य मेरे खिलाफ बनाने का भी प्रयास कर रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने हर संभव प्रयास करा कि हम सबकी छवि को भी खराब किया जाए। पंजाब सरकार ने जिन एजेंसियों को हायर किया, बंबई में स्थित जिन एजेंसियों के माध्यम से सोशल मीडिया पर हमें धमकियां दी जा रही हैं, हमारे साथ गाली गलौज किया जा रहा है, हमारे परिवार के बारे में न जाने क्या क्या बोला जा रहा है, पूरे तरीके से पंजाब सरकार की एजेंसीज का, पंजाब सरकार के पैसे का दुरुपयोग कर आम आदमी पार्टी इस प्रकार से गंदा खेल रच रही है। इसीलिए मैंने कहा था कि आम आदमी पार्टी में एक टॉक्सिक वर्क कल्चर है और भ्रष्टाचार और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में, भ्रष्टाचारी और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में आम आदमी पार्टी

0: पूरी तरीके से फंस कर रह चुकी है। ये जो ये पॉल्यूशन बोर्ड के नोटिस हैं या FIRs हैं वो इतने फ्रिवलियस हैं दैट दे आर नॉट वर्थ द पेपर दे आर रिटन ऑन। जुडिशरी में इन तमाम दस्तावेजों को फाड़ कर फेंक दिया जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से मशीनरी का, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, ये आज आप सबके सामने आना बहुत ज़रूरी था। मैं अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी के पास एक राज्य में सरकार है और एक राज्य की पुलिस है, भारतीय जनता पार्टी के पास 21 राज्यों में सरकार है, 21 राज्यों की पुलिस है। आप जो एक गंदा खेल शुरू कर रहे हैं प्रतिशोध का, बदले का, वो कहां जाकर रुकेगा उसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते, इससे बचिए। और अंत में मैं बस पंजाब सरकार के अधिकारियों को भी कहना चाहूंगा कि आप सब बहुत सम्मानित लोग हैं, इनके आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा जो आपको डराया जा रहा है, नेताओं द्वारा डराया जा रहा है, OSDs द्वारा डराया जा रहा है कि आपका तबादला कर देंगे, आपको सस्पेंड कर देंगे अगर आपने हम 6-7 लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी, मैं उन अधिकारियों को भी कहना चाहता हूं कि आप उनकी धमकियों से डरिए मत। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार चंद महीनों की सरकार है, अब उनका बहुत जल्द पंजाब से सफाया होने जा रहा है, उसके बाद ये तमाम लोग शताब्दी में बैठकर दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो इनके डर और इनकी धमकियों से आप बिल्कुल भी अपने आप को इन्फ्लुएंस मत होने दीजिए, कानून के तहत और देश हित में फैसले लीजिए, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और अंत में जो लोग खुद राजघाट जाते हैं महात्मा गांधी जी की समाधि पर सत्याग्रह का सहारा लेने, आज वही लोग पंजाब की मशीनरी का इस्तेमाल कर कर चुन चुन कर हम सबके खिलाफ कभी विजिलेंस, कभी दिल्ली पुलिस, कभी पॉल्यूशन बोर्ड से कार्रवाई कर रहे हैं। ये जनता के सामने आना जरूरी है और खास तौर पे पंजाब की जनता के सामने तमाम चीजें आनी बहुत जरूरी थी। मैं अनुरोध करूंगा संदीप जी से, वे आगे की बात रखेंगे।
1: हम सारे लोग आम आदमी पार्टी से इसलिए जुड़े थे कि ये इन्होंने इस देश को एक सपना दिखाया था कि एक नई राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं, एक ईमानदार राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं। यही सुनकर, यही देखकर, यही सोचकर इस पार्टी में आए, यहाँ रहते हुए अपनी सैद्धांतिक कारणों से कई सारी विसंगतियों को देखकर पार्टी बदलने का फैसला लिया, जो संविधान ने हमें जो अधिकार दिया है उसके आधार पर। इस बात से डर कर, घबरा कर जो आम आदमी पार्टी अभी FIR कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में छापे मार रहे हैं, फर्जी FIR के द्वारा डराने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे बारे में इन्होंने 2 दिन चलाया, बता रहे हैं कि कई सारे लोग रेडी करके रखे हैं कि आप वहां जाओगे तो आप पर FIR करेंगे, तो मैं कहना चाहता हूं आप करो FIR और फिर पीछे मत हटना उससे, हम लड़ेंगे कानूनी। मेरा ये मानना है कि आप जनता को और अपनी सरकार को एक ही तरीके से बचा सकते हैं और वो है अपने अच्छे काम। इन सारी गंदी चीजों से, इन सारे हथकंडों से आप सरकार नहीं बचा सकते। आपको अगर सरकार बचानी है, सरकार चलानी है, आपको सत्ता चाहिए, तो आपको काम करना पड़ेगा। आप ईमानदारी से काम करिए, आपको कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन इस तरीके से झूठे और फर्जी अगर FIR करके अगर आप सोचोगे कि रोक लोगे तो ये संभव नहीं है। सर पर कफन बांध कर निकले और जो देश हित में सही है, जो देश के लिए सही है, वही कर रहे हैं। थैंक यू
2: संदीप जी। आप बताइए, आपसे आपकी की मांग क्या थी, राष्ट्रपति सर ने क्या आश्वासन दिया है? सर थोड़ी देर में भगवान मान भी आने वाले हैं।
1: महामहिम राष्ट्रपति जी से हमने जो कुछ दिनों में जो चल रहा है उसके बारे में बताया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि संविधान के तहत जो भी प्रोटेक्शंस है, संविधान के तहत सारी मदद दी जाएगी।
3: देखिए, हमने ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये तमाम जो वेंडेटा पॉलिटिक्स की वारदातें हैं उनसे अवगत कराया और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि वे स्वयं भी और भारत का संविधान भी हमें पूरी प्रोटेक्शन देगा। उनके शब्दों में बता रहा हूँ, बाकी जो विस्तार से बात हुई वो हमारे बीच की है। जहाँ तक पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री की बात है कि वे भी आज आ रहे हैं, उनका अधिकार है, वे आए, लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि

पंजाब सरकार का जिस प्रकार से मिसयूज और अब्यूज हो रहा है मशीनरी का, वो बहुत गलत है, गैर संवैधानिक है, और पंजाब के लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं आपको स्पष्ट बताऊं, जब से खास तौर पे राजेंद्र गुप्ता जी पर, जो एक वहाँ के नामी बिजनेसमैन हैं, उन पे उनकी फैक्ट्री को बंद करने की और उन पर FIR करने की कोशिशें हुई हैं, तब से पूरे पंजाब की व्यापारी कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी आहत है। वो ये सोच रहे हैं कि अगर एक शख्स जिसने अपनी असहमति दर्ज कराई लोकतांत्रिक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का इस्तेमाल करते हुए, दो तिहाई सांसद अगर एक पार्टी से अपना नाता तोड़ लेते हैं, उसके बाद अगर इस प्रकार का वेंडेटा अनलीश किया जाता है, तो पंजाब में कोई भी बिजनेसमैन सेफ नहीं है, कोई भी व्यापारी सेफ नहीं है, इनफैक्ट कोई भी नागरिक सेफ नहीं है। लोगों के मन में एक डर है, एक भय है, और पंजाब सरकार के प्रति नफरत है। जितनी जल्दी मानयोग CM साहब और पंजाब के अधिकारी ये बात समझ जाएं, उतना अच्छा।

लालच दिते गए, डराया भी गया, धमकाया भी गया, 100 सुपने दिखाए गए, पर तुसी अडोल रहे क्योंकि साढ़े को प्रेरणा छोटे साहबजाद की है जिन्होंने दीवारों चिण तो पहला बड़े लालच दिते गए, बड़े सुपने दिखाए गए, पर वो बच्चे 7 साल की 5 साल की उम्र च भी अडोल रहे। अज मेले लगते उन्होंने जिन्होंने दीवारां चिणियां सी, जिन्होंने हुक्म दिता सी, उन्हां दीआं कबरां ते कोई दीवा करन वाला नहीं हैगा। सो पंजाब हमेशा जिहड़ा आकर करदा पंजाब नाल धोखा करदा, पंजाब हमेशा उहदी गर्दन नूं झुकाउंदा है। जिहड़े चले गए वधाइयां, भला होया लड़ नेड़ियों छुट्टिया, उम्र ना बीती सारी, लगदी नालों टुटदी चंगी बेकदरां दी यारी। अज मैं राष्ट्रपति जी नूं मिलके आया, मैं राष्ट्रपति जी नूं कहा, मैं कहा जी खेतरी पार्टियां खत्म कर रहे ने, चौटाले की पार्टी खत्म करती, शरद पवार की पार्टी खत्म करती, उद्धव ठाकरे की पार्टी खत्म करती, तेजस्वी के पिछे पए हुए ने लगभग खत्म ही करती, TMC नूं कहिंदे हुण खत्म कर देंगे। मैं कहा जी पर आम आदमी पार्टी नहीं इन्हां तों खत्म होनी, क्योंकि आम आदमी पार्टी नैशनल पार्टी है। अज मैं राष्ट्रपति जी ने यह गल कही है, मैं कहा जी जम्मू कश्मीर तो शुरू हो जाओ, साडा एक विधायक जम्मू कश्मीर के डोडा तो साडा एक विधायक है, पंजाब दे विच साडी सरकार है, दिल्ली दे विच असीं मुख विरोधी पार्टी हाँ, गुजरात दे विच साडे 5 MLA ने, गोवा दे विच साडे MLA ने 2, असीं सारे देश च फैले हुए हाँ जी, साडे हजारां की गिणती च सरपंच ने, साडे पंच ने, साडे मेयर ने, साडे कौंसलर ने, यह पार्टी खत्म होने वाली नहीं हैगी। आ जिहड़े 5-7 बंदे पार्लीमेंट दे एक हाउस दे कट्ठे होकर कहिंदे असीं हुण आह पार्टी बन गए, मैं कहा जी डिसक्वालीफाई करो, जां जे इन्हां दी हिम्मत है तां फिर इस्तीफा दे के जांदे। हुण पंजाब दी गिणती मिणती करनी होवे, अज राष्ट्रपति जी नूं मैं जो दस्या, राष्ट्रपति जी भी थोड़ा जिहा हैरान हो गए, मैनूं दोबारा कहिंदे मैनूं दोबारा दस्यो। मैं कहा जी MLA 2 ने BJP दे पंजाब च, राज्यसभा दे MP 6 ने, ये किहड़े हिसाब नाल हो गया जी? कहते कैसे, मुझे समझ नहीं, मैं मुझे पता नहीं चला। मैं कि 117 की असैम्बली है, वो 2 MLA चुने हुए ने, तो अज 6 MP उन्होंने राज्यसभा के ने, जबकि टोटल सीटें ही 7 ने जी, सीटा 7 ने 117 दियाँ, 2 जने 6 बंद किमें चुन सकते हैं? मैं ये तो मजाक है, जोड़ा संविधान का दायर है मजाक है, ये तो लोकतंत्र की मतलब कोजी हरकत है कि लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। कहते मैं संविधान के माहरों को बुलाऊंगी, मैंने कहा बुला लो, वैसे संविधान तो समझते कख नहीं हो, संविधान तो रोज़ बदलते रहते हैं, वह रोज़ कहते 340 पूरे हो गए उद ही बदल देंगे। सो इस करके इतने आके शक्ति प्रदर्शन करना, थोड़ा साथ, मैं थोड़े हाजिरी लवाई है उत्थे, मैं कहा जी 95 खड़े ने बाहर, वैसे राष्ट्रपति भवन च कोई बैठन जगह की कमी नहीं हैगी, अशोक हाल वर्गे बड़े बड़े हाल ने उत्थे, पर कहते कोई गल नहीं, तुसी उन्हां वल्लों सारे वल्लों आ गए। मैं कहा सारे दस्तखत ने कले कले दे, मैं कहा जी उन्होंने अगे चुने ने, लोगों ने MLA चुने, MLA ने वो चुने, तो फिर कितने ना कितना लोगों का मैंडेटी जोड़ा है वो हट होया ना। तो इस करके हुण जिवें हुण कहिंदे आ कि BJP आऊगी, BJP कहिंदी हुण बस हुण पंजाब दा नंबर है, लो दोस्तों गल ये है, जदों भी कोई विजय रथ रोकना पिया तां पंजाब ने रोकिया। 2014 च आम आदमी पार्टी दे 4 MP आए, मैनू 2 साल मैनू इत्थे पार्लीमेंट च सवाल पूछी गए पत्रकार, आपने मोदी की आंधी को कैसे रोका, पूरे देश में मोदी की आंधी थी कैसे रोका? मैं कहा सीधी जी गल है, उन्होंने चो निशान कमल का फुल है, कमल का फुल उगता चिक्कड़ च, साडा चो निशान झाड़ू है, तो झाड़ू का काम है चिक्कड़ की सफाई करना, अभी चिक्कड़ की सफाई करती कमल उगे ही नहीं। तो इस करके आपां हुण एक बार फिर ये विजय रथ रोकण की जिम्मेवारी अपने पर आ गई, अपने प्रधान जी अपने नाल ने, सच्चे दिलों अपनी पार्टी के कदे भी आपां नूं कोई शिका शिकायत होवे इमीजिएटली लाणेदार दे तौर पर

बात कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी बहुत हो गई, एंटी इनकम्बेंसी बहुत हो गई, लेकिन पंजाब के अंदर मेरे पास रोज सर्वे आते हैं पंजाब के हर हलके के हर इलाके के। आप किसी पिंड में चले

0: बहुत पॉलिटिकली अवेयर हैं, बहुत सियाने लोग हैं, और वो देख के परख के वोट डालते हैं, ऐसे नहीं। इससे पहले भी बीजेपी जो है एक सीट है उनके पास, और लोकसभा की तो है ही नहीं, तो पंजाब में भूल जाएं कि वो SIR कर लेंगे या नकली वोट बना लेंगे, असली वोट जो है काट देंगे या नकली असली काट देंगे किसी पार्टी की, फिर उसके बाद ये वो धिम कायम का जो भी इनको आता है काम, बंगाल में किया होगा या बिहार में, मुझे नहीं पता, लेकिन पंजाब जो है वो स्टेट अलग से।
1: अंबर ग्रुप हायर कर रहे हैं 1 साल के एक्सपीरियंस से क्लीन रिकॉर्ड वाले ओनर ऑपरेटर्स। ट्रकिंग इंडस्ट्री विच 25 साल तो वध एक्सपीरियंस अते इंटरमॉडल कंटेनर्स च वड्डा नाम अमर ग्रुप, जिथे तुहानू मिलणगे वधिया रेट्स, ऑन टाइम वीकली पेमेंट, फ्यूल डिस्काउंट्स, 24/7 डिस्पैच सपोर्ट, टोरंटो तो मॉन्ट्रियल, GTA ते ओंटारियो भर विच सेम डे घर वापसी वाले रेगुलर अते फ्लैक्सीबल कंटेनर लोड्स। हुणे कॉल करो 905-893-2270 एक्सटेंशन 206 या 207, 905-893-2270 एक्सटेंशन 206 और 207। अमर ग्रुप, जिथे ड्राइवर्स नू मिले फैमिली वांग रिस्पेक्ट।
2: Best Bargain Carpets and Flooring sirf ek na hi nahi sachi best bargain hai.
3: Best bargain te milde ne brand name carpets, hardwood, vinyl ate laminate floors bargain prices te.
2: Sade store te aake aap selection vekho ya apne ghar baith ke choose karo.
3: Lajawab quality, top class service, best bargain to behtar koi nahi.
2: We also service hotels, motels, banquets and high rise buildings. Best Bargain Carpets, 905-696-7877.
4: CCCA ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ।
5: ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲਾਂ, ਪਾਵਰ ਸੇਲ ਨੋਟਿਸ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੀਤਿਆਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
6: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
5: ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਮ ਆਸਾਨ।

मेरे दर्द कहानी लिख दे रे, दर्द कहानी लिख दे रे, कागज कलम दवात बिना हो मे

0: खुदाई असा तेरी, रबावे तेरी रात मुक गई।
1: वाह वाह, ओके, मेरे मेरे तक खजू पानी आ गया। नहीं, बहुत सोना, बहुत ही ज्यादा, एक एक लफ्ज।
0: उन्हें आशीर्वाद है जी मेरे उस्ताद। उन्होंने मैंने एक गल सिखाई है, कहिंदे तनवीर जदों भी कुछ करना अपने वालों चंगा करी ते ऑडियंस तैनू भी तेरी मिल जानी, घबराई ना भी कदों मिलनी है।
1: ये कुछ पता नहीं हुंदा, परमात्मा ने ना कदों थोड़ी किस्मत च केड़ा पलटा वज जाना है, तुसी कदों कुछ सोचदे हो ते हो
0: पर
1: कुछ जाना है
0: परमात्मा
1: ना।
0: दा मैं शुक्र करदा,
1: तां
0: मैं पहला इंसान आई थिंक जिन्हों जदों सुरत है नहीं सी, अकल है नहीं सी, उदों भी टाइम देता सीगा, हुण जदों अकल आ रही थोड़ी थोड़ी फिर भी टाइम देता
1: सही
0: पर
1: है।
0: हुण संभालण दी समत भी दे दे कि मैं सांभ सका,
1: हाँ, नहीं, आ गई
0: संभालना बड़ा औखा हो
1: मत आ
0: जांदा
1: गई हुण लगदा।
0: है
1: जिदा थोनों हिंदी, थोड़ी आवाज दे विच ना हिंदी वाला टच भी हैगा,
0: जी
1: तां मैं सुनिया सी थोड़े एक दो गाने
0: हाँ
1: हिंदी च भी गाउंदे होए,
0: जी
1: तां तुसी मतलब किन्नू पसंद करदे हो ज्यादा, कि ओ जड़े हिंदी सिंगर हैगे गाउण वाले, जां तुसी कुछ गा के सुनाओ तां मैनू खुशी होगी।
0: देखो जी, साडी इंडस्ट्री च तां सारे कमाल होए है, रफी साहब, किशोर जी, लता जी, आशा जी, उन्हां वर्गा किन्ना ने कम करना। और मैं ज़्यादा पहले सुनता हुंदा सी पाकिस्तान
1: अच्छा जी।
0: नुसर साहब नू, गुलाम अली साहब नू, मेहंदी हसन साहब नू, नूरजहां जी नू, उन्हां दे गाने बहुत सुनदा सी मैं। ते एक नुसर साहब दा गाना मैं थोनू थोड़ी नज़र करदा जिहड़ा मैनू
1: जी
0: बड़ा पसंद है,
1: जी
0: चा

0: तेरी।
1: क्या बात, क्या बात,
0: मैंने
1: बहुत
0: मैंने बड़ी
1: बहुत।
0: चीजें पसंद सी है। मैंने बड़ा मैं गालन से बहुत अच्छे तरीके
1: हाँ
0: पर
1: हाँ
0: बड़े औखे आए।
1: पर बहुत जच दे थोड़े मुंह, तुसी हिंदी भी मौका अजे भी मिलता है ना, तुसी गा दो।
0: डेफिनेटली गाऊंगा, बस तुझे दुआ करनी है।
1: बहुत बहुत मेरे वालों तो बहुत आशीर्वाद भर भर
0: थैंक यू
1: के।
0: थैंक यू जी।
1: चल होर कुछ अपने वालों तुसी कोई स्नेहा देना आपदे श्रोतिया नूं जां कुछ।
0: देखो जी स्रोते, हुण मेरे जिन्ने भी चाहुण वाले है जां मैनू किसी भी चंगे कलाकार नूं तुसी सुणदे हो, उहनूं प्यार दिओ, है ना, उहनूं रुलण ना दिओ। क्योंकि ना तां इहदे 'च कोई प्रोड्यूसर दा रोल हुंदा है, ना ही कलाकार दा आपदा कोई रोल हुंदा है। कि कलाकार कहे मैं आपदे करके बनया, मेरे 'च गुण सीगा तां बनया, जां प्रोड्यूसर उठ के कहे मेरे पैसे लाए करके, मैं प्रमोशन दित्ती करके मैं बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। इस 'च सब तों वड्डा रोल है लोकां दा, साडे स्रोतियां दा, जिन्हां ने सानूं बनाउणा है। सो मैं यही बेनती करदा सारिआं नूं, चंगा सुणो और चंगे जिहड़े गाउंदे आ उहनां नूं प्यार दिओ, बस। बाकी थोड़े तो वड्डा कोई नहीं हैगा, तुसीं सारे जिउंदे वसदे रहो, प्यार करदे रहो, इदां ही मेरे वर्गे आर्टिस्टां नूं, बल्ले बल्ले आ।
1: सही गल है।

0: लगा था तुझे।
1: मेरे खिलाफ गवाही देके
0: तू बच जाएगी।
2: क्या
0: कोई नहीं आएगा तुझे बचाने के लिए?
3: वाह मेरे हीरो, आते ही कर दिया गुंडों को जीरो।
1: मेरे दो तीन आदमियों को मार के खुद को तू शेर समझ रहा है?
0: अरे पूरी फौज पड़ी है तीर्थ लड़ने के लिए।
1: तो भेज अपनी फौज, अब तू ही आ जा।
4: अरे ऐसा तू क्या खाता है यार, इतनी ताकत कहां से लाता है?
1: मेरा भरोसेमंद साथी एक्स प्लस गोल्ड कैप्सूल, जो देता है मुझे घोड़े की जैसी चुस्ती फुर्ती और ताकत, और साथ में बढ़ाता है मेरा स्टैमिना।
5: गिग एक्सप्रेस जो कि हायर कर रहे ने ओनर ऑपरेटर अते कंपनी ड्राइवर फॉर सिटी वर्क एंड मॉन्ट्रियल ट्रिप। जे तुसी ओंटारियो दे किसी भी सिटी च रहने हो ते मिसिसागा तो ओशवा या मिसिसागा तो विंसर दे लोड लेना चाहने हो ते आज ही कॉल करो 905-615-0544 एक्सटेंशन 6013। गिग एक्सप्रेस।
6: सत श्री अकाल जी, देख रहे सारे दर्शकों को महेंद्रपाल सिंह ढेरी वालों प्यार भरी सत श्री अकाल जी। तो जिवें साडे दर्शकों को पता ही है जी, हुण गर्मियां दा सीजन आ चुका ते केटरिंग घरां दे विच ब्याह शादियां फंक्शन सारा कुछ अखंड पाठ घरां दी नवें घर दी ओपनिंग बच्चे दा बर्थडे तुसीं करना तां मोहन ढाबे नूं तुसीं भुलना जायो। केटरिंग करवानी है तां तुसीं जरूर साडे नाल संपर्क करो, मोहन ढाबे ते आओ 416-450-99। साडे कोल हर तरां दे नवें नवें डिजाइन, हुण तुहानूं डिस्पोजेबल प्लेटां लैके आउण दी वी लोड़ नहीं, साडे कोल नवीं नवीं प्लेटां कप कौलियां गिलास सारा कुछ पहुँच चुका। तो तुम जरूर एक बार साढ़े संपर्क करो, साडा फूड तो तुम ऑलरेडी ट्राई कर चुके हो, साड़ी प्रेजेंटेशन देखो, एक बार साढ़े यूनिट के साडे रेस्टोरेंट के पधारो, एक क्वींस गेट बुलेवार्ड यूनिट नंबर 13 असी बोल्टन के जी अपने हाईवे 50 एंड क्वींस गेट का कॉर्नर है, मोहन ढाबा 416-450-99। सत श्री अकाल जी।
7: रब ना करे जे तुहाडी कार ट्रक जां ट्रेलर किते भी एक्सीडेंट हो गया है जां खराब हो गई है तां फिकर करन दी जरूरत नहीं, अज ही कॉल करो एसटी टोइंग जां कामटो 416-243-7777 जां तुसी कॉल कर सकते हो 416-513-1313। ए सारी इंश्योरेंस कंपनी नाल खुद डील करदे ने एसटी टोइंग।
8: Sarai Trucking, the name you can trust in transportation industry. Hire kar rahe ne AZ company drivers and owner operators for Midwest, Southwest, California and Toronto Montreal run. Steady work around the year. All new equipments de naal 24/7 the friendly dispatch aur the vadhiya pay rate te weekly payment basis te direct deposit lain layi ajj hi call karo. Sarai Trucking 905-794-8837 905-794-8837 Sarai

था तू करता सियार मेंढा साई जो तो पावे सोई थीसी जो तू देह सोई हो पाई रहा सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनू कृपा करह इतन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप विछोड़िया आ मिलाया तू दरिया सब तुझ ही माहे तद बिन दूजा कोई नाहे जी जन सब तेरा खेल वजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल जिसनों तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाने जिन हर सेव्या तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तद बिन दूजा अवर न कोए तू कर कर वेख है जान है सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सरवरड़ पहले नवासा पानी पावक तने किया पंक जो मोह पग्नि चाल हम देखा तह डूबी अले मन एक न चेतस मूर मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा ना हो जति सती नहीं पड़िया मूर्ख मुगदा जन्म पया परणवत नानक तिन की सरणा जिंतु नाही विसरिया आसा महला पंजवा पई प्राप्त मानुख द्योहरिया गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया अवर काज तेरा कितै न काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरन जाम लाग भव जल तरन कै जन्म ब्रता जात रंग माया कै रहाओ जप तप संजम धर्म न कमाया सेवा साधना जानिया हर राया कहो नानक हम नीच करमा सरण परे की राको शर्मा कहो नानक हम नीच करमा सरण परे की राको शर्मा कवियो बाच बेनती चौ पई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तव चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रत पारा हमरे दुष्ट सबै तुम काब हो आप हाथ दै मोहे बचाव हो सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दै करियै सबै रण कौ आ संघरियै पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम है शाड कोई अवर न त्याऊं जो वर चाऊं सो तुम ते पाऊं सेवक से कह मारे तारे है चुन चुन सत्र हमारे मारे है आप हाथ दै मुझे उबरे है मरण काल का त्रासन वरे है हो जो सा हमारे पच्छा श्रीया तो जू करो रच्छा राख लिहो मोहे राखण हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुमहो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिव जूय अवतरा काल पाए कर बिस्न प्रकाशा सगल काल का किया तमासा जमन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जूतियो जमन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है तहे हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जशन उपजायो आदि अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सगल प्रजाजन आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पलमो बद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस्तूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला
संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, कट कट के पट पट की जाने। जब उद करख करा करतारा, प्रजा तरतव देह अपारा। जब या करख कर तू कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जे ते बदन श्रेष्ठ सब धारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही तेरे निरालम, जानत भेद भेद अरियालम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव ना पावत बेदा। ताको कृपाहन अनमानत, महामूड कछ भेद न जानत। महादेव को कैत सदा शिव, निरंकार का चिंत न भेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, खेबे सजा प्रथम संसारा। एक है रूप अनूप स्वरूपा, रंग पयो राव कही भूपा। अंडज जेरज से तज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी। काऊ पूदरा जाहो है बैठा, कऊ सुन प्यो संकर कैठा। सिगरी सृट दखाए अचंपव, आद जुगाद स्वरूप सजंपव। अवरक्षा मेरी तुम करो, सिख अवार्य सिख संग्रह। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जी अस तुझ तव सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत हो मरे। पुरख जमन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय हैं, ताके काल निकट न आय। रचा हुए तहे सब काला, दुष्ट अरे तरे तत्काला। कृपा दृष्टन जाय न हर हो, ताके ताव तनक महार हो। रिद्ध सिद्ध घर मोसब होई, दुट शासव सकै न कोई। एक बार जंत मैं संभारा, काल फांस ते ताए उबारा। जिन्दर नाम तहारू कहा, दार्द दुष्ट दोग ते रहा। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दैल हो उवारी। सर्व ठौर मोह हो सहाई, दुष्ट दोग तेल हो बचाई। सर्व ठौर मोह हो सहाई, दुष्ट दोग तेल हो बचाई। सवैयम पाए गहे जब ते, तुमरे तब ते। को आंख तरह नहीं आने, राम रहीम पुराण कुरान। अनेक कहें मत एक ना माने, सिमरत शास्त्र वेद सबै। बहु भेद कह हम एक ना जाने, श्रीयस पान कृपा तुमरी कारी। मैं ना कहो सब तोहे बखाने, दोहरा

0: जाहे, जिससे मरत सो कोई सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: अर्थ करने वखरी गल है, क्योंकि विद्वता का अपना खेतर है। तो याद रखियो, जो स्रोता भी सुन वाला ना होवे, उदो कई बार वक्तियां दी मौत हो जाती है। विद्वान पैदा करने कोई छोटी जी गल हूँ, तो जने के सानू भी जिन्हों मर्जी महान विद्वान हो, प्यारे हो, विद्वता बहुत दूर की बात है। हुण भाई साहब दी रचना सुनो, मैं हुण क्या अगे है, भुज बली अष्ट पुजा जाके चालीस कर, 160 पाओ चाल चला चल खै। हुण मैं दो अर्थ दे करांगा, क्योंकि भुज बली जिहड़ा मन है, इहदियां पुजावां विच बाहवां विच बड़ी ताकत है। भुज बली अष्ट पुजा, इस मन दियां दो शब्द, एक मैं शब्द वरतांगा मन, ते एक वरतांगा मन। जदों शब्द मन वरतांगा, इहदा मतलब मनुख दा माइंड, ते जदों शब्द मैं मन वरतांगा, इहदा अर्थ है जिहड़ा तोलण वाला मन। वाह वाह भाई साहब तो कुरबान जाइए जी। भुज बली अष्ट पुजा, जिमें अठ पंज सेरियां होण ते इक मन बनदा है। कहन लगे अंदर वाला मन, इहदियां अठ बाहवां ने। भुज बली है पर इहदियां अठ बाहवां ने। हुण इह व्याख्या अज तक किसे संगत सुनदी पई है, विद्वान सुनदे आ घरां च बैठे। मैं सच्ची मुची इस मंजी साहब तो कहना कि जेकर कोई इस तुक दे होर गहरे अर्थ जानदा होवे ते जरूर सांझ पायो, क्योंकि मैं सिर्फ अखरी अर्थ कर रहा। हुण मन दियां अठ बाहवां केड़ियां ने, इहदी व्याख्या नहीं कीती। इह जरूर कह दिता कि जिवें मन बाहर दा अठ पंज किलो होण, अठ पंज सेरियां होण, जिहनूं साडे बजुर्ग सिद्धे सौखा पंसेरी कहिंदे सन, अठ पंज सेरियां ते इस मन दियां अंदर वाली दियां अठ बाहवां। चाली सेर तां मन, इस अंदर वाले मन दे चाली हथ। फिर सुनियो, एक एक बाह नूं पंज पंज हथ लगे ने। फिर सुनो, भुज बली अष्ट पूजा जाके चालीस कर, बाहर दा मन ओदियां अठ पंसेरियां, अंदर वाला जिहड़ा मन इहदियां अठ बाहवां, बाहर दे मन दे चाली सेर, अंदर वाले मन दे चाली हथ। 160 पाऊं, हुण मैं बेनती करांगा, बाहर वाले मन दे 160 पाइए। भाई साहब ने दूजा अर्थ किया पाऊं दा अर्थ पैर, अंदर वाला मन जिहड़ा ना, इहदे 160 पैर ने। आ तां दो पैरां वाला बंदा ही टिकदा नहीं पिया, 160 वाले ने कित्थे टिक जाणा। भाई साहब कहिंदे मन दी अवस्था, क्योंकि अज दा शब्द गहरा महाराज जी दा, जी सारी बाणी डूंगी है। मन का कहा मन सा करै, जो मन कहिंदा बुद्धि ओ बनी जांदी है। ते गुरु रामदास जी कोल संगत आई जी, सच्चे पातशाह ने रहमतां दीयां झड़ियां लाईयां ने जी इत्थे। धन गुरु रामदास, दिन ब दिन ये हमेशा ही इत्थे भीड़ां ही रहणियां ने जी। मैं भीड़ शब्द वरत्या, पर भीड़ माड़ा नहीं, क्योंकि गुरबाणी विच आया साध संगत की भीड़ जो पाई, इहनूं माड़ा ना समझियो। ये नगर वसदी रहना, इत्थे संगतां दीयां कतारां ही लगनियां रहणियां ने, क्योंकि गुरु अर्जन देव महाराज ये बचन कह के गया, इन्हें संगण ही रहना है। दिठे सभे थाम नहीं तुद जिहा, बद्धो पुरख विधाता तां तू सोहया, वसदी सगन अपार अनूप रामदासपुर, हर हां नानक कसमल जय नाया रामदास सर। गुरु रामदास जी कोल सिख हुंदे आ, बेनती करदे आ, मारे सच्चे पातशाह ये मन नहीं टिकदा। कई बारी नेम निभांदिया आलस कर दिंदा है, कई बारी मन दा नहीं पर शरीर धक्के नाल आपां कर लिया हुंदा, इस तरीके जी सब दा नहीं। अक्सर कई बारी बंदा जो पाठ करता है जां अपना नेम निभांदा है, जिद्दन मन किते मैला होवे, फुरनिया करके, खाण करके, किसी की संगत करके, क्योंकि कई बारी अपने अंदर दे माड़े ख्याल, पुराने ख्याल वो इक्को दम मैलिया कर जाते। फुरना उठिया, एक फुरने ने बस जपजी साहब सारा लंघा दिता जबान तो, टिकी नहीं मानी।

0: तू एक एक्टर है, बस एक्टिंग कर रहे हैं, तू धर्मी नहीं। सतगुरु ये बचन कर रहे हैं,
1: नाम विसार माया मद पिया।
0: नाम नू भुला के तू माया दे नशे नू पीता होया है।
1: बिन गुर भगत नाही सुख थिया।
0: गुरु जी दे सन्मुख हो के परमात्मा दी भगती तो बिना किसे नू सुख नहीं मिलिया।
1: सूकर स्वान गर्दब मंजारा।
0: सूकर स्वान गर्दब मंजारा, तेरी हालत होनी है कुत्ता सूर गदा मंजारा दर्थ बिल्ला। महाराज कहें तो अजय समय तेन मनुखा जन्म मिले है, ये चार दी गिनती कीती है।
1: पशु मलेच नीच चंडाला।
0: अगे महाराज कहने पशु बिरती नीच कर्म वाला लफज वरत्या मलेश। मैं बेनती करांगा वैसे सीधे अर्थ ने जिदी बुद्धि मैली हो जाए, उंज मलेश जिहड़ा शब्द है भारत विच विदेशी हमलावरां लाभ वरते है। गुरबाणी च उस भी संबंधी आया है कि महाराज जी का खत्रियां ता धर्म छोड़िया मलेश भाख्या गई। हुण इत्थे मलेश दर ते जिहदी मत बुद्धि बिलकुल भ्रष्ट हो चुकी है।
1: गुर ते मोह फेरे तिन जोन पवाईआ।
0: जिहड़े बंदे ने अपने गुरु तो मूँह फेर लिया बेमुख हो गया वो जूना विच भटकदा है।
1: बंधन बांधिया आईआ जाईआ।
0: बंधन च बंधिया होया बंदा जमदा ते मरदा है।
1: गुर सेवा ते लह पदार्थ।
0: पर जे बंदा गुरु दी सेवा करे सिमरन करे धन गुरु नानक साहब कहिंदे ओनू नाम पदार्थ मिलदा है।
1: हिरदय नाम सदा किरतार्थ।
0: ओदे हिरदे विच वाहिगुरु जी दा नाम वस जांदा है। ते किरतार दा लफ्जी अर्थ है जी सफल होना, अपनी मंजिल ते पहुंच जाना। ओ बंदा अपनी जिंदगी च सफल हुंदा है।
1: साची दरगाह पूछ ना होए।
0: एको जे बंदे दी रब दी दरगाह च कोई लेखा नहीं हुंदा।
1: माने हुक्म सीजे दर सोए।
0: जेड़ा वाहिगुरु जी दे हुक्म नू मन लेगा ओ प्रभु दे दर ते स्वीकार होवेगा।
1: सतगुर मिले ता तिस कौ जाणै।
0: जदों सतगुरु जी मिल ता फिर वाहिगुरु जी जाने जांदे खन।
1: रहै रजाई हुक्म पछाणै।
0: फिर बंदा वाहिगुरु जी दी रजा च रहिंदा है ते वाहिगुरु जी दे हुक्म नू पहचानदा है।
1: हुक्म पछाण सच्चै दर वास।
0: जिस बंदे नू वाहिगुरु जी दे हुक्म दी समझ पै गई ओनू सच्चे दे घर च टिकाणा मिलदा है।
1: काल बिकाल शब्द भए नास।
0: शब्द दी कृपा नाल ओदा जन्म ते मरण खत्म हुंदा है।
1: रहै अतीत जाने सब तिसका।
0: ओ बंदा फिर माया दे विच रहिंदा अतीत नरलेप है। कोई चीज मिलदी है कहिंदा इह करते पुरख वाहिगुरु जी ने दित्ती है। हर चीज दा दाता वाहिगुरु है।
1: तन मन अर्पै है एहो जिसका।
0: अपना तन अपना मन ओनू अर्प दिंदा जिन्ने दिता होया है।
1: ना ओ आवै ना ओ जाए।
0: एहो जा इंसान ना जमदा है ते ना ओ मरदा है।
1: नानक साचे साच समाए।
0: तन गुरु नानक साहिब महाराज कहिंदे एहो जा इंसान सच्चे वाहिगुरु जी दी भगती कर करके सच्चे परमात्मा भी समा जांदा है। ये सतगुरां ने सानू अज बख्शिश कीती। संगत जी अज दा दिन है, संखेप जी बेनती करदे आं जिस दिन माता गंगा जी बाबा बुढ़ा साहिब जी दे कोल भीर साहिब बेनती करन गए। देखो अध्यूनक विद्वान की मन रहे ने, मैं उधर कुछ नहीं बोलना, सिर्फ एक बेनती है। सूरज प्रकाश तो भी पुराना ग्रंथ कह महिमा प्रकाश सरूपदास जी भला दा लिखिया गुरबिलास पातशाह छेवीं है सूरज प्रकाश विच भी है। जेड़े साडे पुरातन स्रोत ने वो सारे इस साखी नू स्वीकार दे आ। इत्थों तक गुरबिलास कहिंदा इहदे कारण इक्को सी कि सतगुरु जी दे घर च संगत ने माता जी दी बहुत सुंदर बस्तर दिते, वो बस्तर भिज गए सुकने पाए ते बाबा पृथ्वी चंद दी घरवाली बीबी करमो ने देखिया ते उन्होंने बाबा पृथ्वी चंद जी नूं घर आ कहा जे तुसी गुरु दा हुक्म मानदे पिता गुरदेव दा अज गुरियाई तुहाडे कोल हुंदी, ये साजो समान ये सारी दौलत पैसा कपड़ा सा

0: एजेंसी है, न्यू मॉडल टेंडर फॉर्म यानी कि एमटीएफ अनुसार बिडा दी सख्ती नाल जांच करनी चाहिए सी। एमटीएफ दे आर्टिकल 60 अनुसार जे साइट निर्धारित रेल हेड तो 8 किलोमीटर तो वध दूर है तो फाइनेंशियल बिड विच 0.07 प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर के हिसाब नाल नॉर्मलाइजेशन लागू करना लाजमी है जो एक तो वध बिड मिले होण, जे एक तो वध बिड मिले होण। निर्धारित रेल हेड स्टोरेज ते मूवमेंट की योजना का अहम हिस्सा होंदा, इसलिए एमटीएफ के नियमों में कोई अस्पष्टता नहीं है। यह भी वेख्या गया कि भिखीविंड केंद्र लिए PSWC वालों की गई फाइनेंशियल इवैल्यूएशन पहला ही 2 मार्च 2026 को हुई और SLC मीटिंग में पेश की जा चुकी है और यह चिट्ठी भेजी गई है। मतलब ये चिट्ठी यह कहने की कोशिश कर रही है कि जे डॉक्टर गगनदीप रंधावा ने या उन्होंने जोड़े इल्ज़ाम लगे कि वो टेंडर बाबा नागा वाली कंपनी को दिता गया, दरअसल वो पट्टी रेल हैड तो दूर सीगा। और यही गल लालजीत भुल्लर का पिता जोड़ा सुखदेव भुल्लर है कह रहा है कि साड़ी साइट नेड़े है वो दूर से बावजूद उसे टेंडर दिता गया। मैं इतने कोई एक पक्ष नहीं रख रहा क्योंकि मेरा काम किसी खबर के दोवें पक्ष। एक कल चिट्ठी मेरे सामने आई और मैं इसनों बड़े अफसर भी डिस्कस किया, हालांकि कोई बहुता बोलने को तैयार नहीं होया। पर एक गल साफ है कि इस पूरे मामले के FCI की एंट्री ने इस पूरे मामले में एक वड्डा यूटर्न दिता। मैं पक्ष तुहाडे सामने रखना सी या कह लो कि गल तुहाडे सामने रखनी सी कि यह टेंडर वाली कहानी हुण कुछ होर रूप धारण कर ली है। और की मनिया जाए, कई बार कहता हूं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। की डॉक्टर गगनदीप रंधावा वाले केस उही हो रहा है ना, CBI जांच की गल, जिहड़े घड़ियाली हंजू भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के लीडर उत्थे वाह के आए है, शर्म डुब के मर जाना चाहिए थोनू। मैनू कहण च कोई गुरेज नहीं है, ना मैं डरदा तुहाडे तो, तुसी की इंसाफ दवाओगे? दसो CBI जांच कित्थे बिट्टू साहब, क्यों नहीं गृहमंत्री साहब ऑर्डर देंदे? हुण ते FCI भी चिट्ठी पत्र कर रहा है, FCI ने कहता ना, वड़ गया ना FCI, केंद्र की एजेंसी आ गई, दे दो CBI जांच। तुसी बाकियां ते गल छुट के अपनी जिम्मेवारी तो भज रहे हो। और जिन्ना ये इंसाफ देर हो रहा है उन्ना इस मसले दे विच वड्डे यूटर्न आ रहे। हुण FCI यह कह रहे कि टेंडर गलत दिता गया, यानी कि जो लालजीत भुल्लर और उसका परिवार कह रहा सी वही गल FCI कह रही है। कुल मिला के कहानी है, सवाल वड्डे ने। मैं फिलहाल ये जानकारी तुहाडे तक जनतक करनी सी कि भारतीय जनता पार्टी दे लीडर चुप क्यों ने, और FCI का यूटर्न की लालजीत भुल्लर नूं क्लीन चिट दे रहा है, कि लालजीत भुल्लर के पिता नूं, और की यह मनिया जाए कि इस आधार से फिर अग्रिम जमानत भी ले जाएंगे? एक चल की रहा है, कौन चला रहा है, या कोई सांझ पै गई है? भारतीय जनता पार्टी के लीडर घट्टो घट्टे का जवाब दे, चुप क्यों ने? CBI जांच कित्थे है? इंसाफ कदों मिलेगा? FCI का रोल की आ गया? जांच हुण क्यों नहीं हो रही, और किनू बचाउण की कोशिश की जा रही है? की कोई डील हुई है, या जिहड़े खदशे मैनू कहण च हुण कोई दौरा ही नहीं, प्रगट सिंह उस दिन कह ही रहे सी ना कि यह मनिया जाए कि जिहड़ा ऑपरेशन लोटस चल रहा उहदे बहाने ही सारा कुछ चल रहा? शर्म आनी चाहिए जे है तो। इजाजत दिओ, सत श्री अकाल।
1: अमर ग्रुप हायर कर रहे हैं 1 साल के एक्सपीरियंस से क्लीन रिकॉर्ड वाले ओनर ऑपरेटर्स। ट्रकिंग इंडस्ट्री विच 25 साल तो वध एक्सपीरियंस अते इंटरमॉडल कंटेनर्स च वड्डा नाम अमर ग्रुप, जिथे तुहानू मिलणगे वधिया रेट्स, ऑन टाइम वीकली पेमेंट, फ्यूल डिस्काउंट्स, 24/7 डिस्पैच सपोर्ट, टोरंटो तो मोंट्रियाल, GTA ते ओंटेरियो भर विच सेम डे घर वापसी वाले रेगुलर अते फ्लैक्सीबल कंटेनर लोड्स। हुणे कॉल करो 905-893-2270 एक्सटेंशन 206 या 207, 905-893-2270 एक्सटेंशन 206 और 207। अमर ग्रुप, जिथे ड्राइवर्स नू मिले फैमिली वांग रिस्पेक्ट।
2: बेस्ट बार्गेन कारपेट्स एंड फ्लोरिंग सिर्फ एक ना ही नहीं सच्ची बेस्ट बार्गेन है।
3: बेस्ट बार्गेन ते मिलदे ने ब्रांड नेम कारपेट्स, हार्डवुड, वाइनल अते लैमिनेट फ्लोर्स बार्गेन प्राइसेस ते।
2: साडे स्टोर ते आके आप सिलेक्शन देखो या अपने घर बैठ के चूज करो।
3: लाजवाब क्वालिटी, टॉप क्लास सर्विस, बेस्ट बार्गेन तो बेहतर कोई नहीं।
2: We also service hotels, motels, banquets and high-rise buildings. Best Bargain Carpets, 905-696-7877.
4: CCCA ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ।
5: ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲਾਂ, ਪਾਵਰ ਸੇਲ ਨੋਟਿਸ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੀਤਿਆਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
6: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
5: ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਮ ਆਸਾਨ।